दोस्तों, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम इंसान हैं और हमसे भूल हो सकती है, तो हम दूसरों की गलतियों को भी आसानी से क्षमा कर देते हैं। ये भाव समाज में एक दूसरे के प्रति दया और समझ को बढ़ाता है। वैसे वास्तव में हम सबको ही अहंकार छोड़कर अपनी सीमाओं और वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक सच्चा और सहज इंसान बनकर इस समाज को एक नया रूप देना चाहिए। तो जनाब, अगर आज की बात करें तो आज की सबसे अच्छी खबर तो ये है कि आप सभी के लिए कि आपको इस पूरे हफ्ते का सबसे बेहतरीन आप आज खुद बनाने वाले हैं। आपका आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो जनाब ये तय करना तो आपके हाथ में है। तो आज सुबह की पहली चाय हमारे साथ आप पी रहे हैं भोर सुहानी में, जहाँ इस वक्त वक्त हुआ है 5:33 और 19 सेकेंड। आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ और इन उजालों के साथ साथ इस प्रकृति का बेहतरीन लुत्फ लेना। तो भाई आज बनता है

आप सुन रहे हैं भोर सुहानी कार्यक्रम आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. आपके साथ है आप ही की दोस्त रूपा धवन.

जी हाँ, प्रीत की हथकड़ी ऐसी ही होती है। और दोस्तों, अगर हम रविवार के लिए ये कहें कि हफ्ते भर हमने दौड़ाया है वक्त को, आज रविवार है, चलिए वक्त को थोड़ा सा ठहराते हैं, पास बैठकर हालचाल पूछते हैं, क्योंकि खुशियाँ किसी सामान में नहीं, अपनों के साथ बिताए लम्हों में होती हैं।

एक अजीब सी दास्तान बुन रहा हूं मैं तुम्हारे जाने के बाद, स्वयं में हर पल तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। भोर सुहाने से वक्त है आपसे विदा लेने का। रूपा आपके साथ फिर से मिलेगी एक बार किसी मोड़ पर फिर से, लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित

देशों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: स्वागत है आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है विदुषी वत्स। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आई है। एशियाई खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का पहला बॉक्सिंग पदक पक्का कर लिया है। अंकुश ने ताजिकिस्तान के नजरुक सलीमो को 5-0 के सर्वसम्मत निर्णय से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकुश ने मुकाबले के दौरान शुरू से ही आक्रामक और नियंत्रित बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया और पांचों जजों ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस जीत के साथ ही अंकुश ने एशियाई खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। अब सेमीफाइनल में अंकुश पंघाल के सामने बेहद कड़ी चुनौती होने वाली है। उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन फजलुद्दीन एर्केबेनोवस से खेला जाएगा।
1: And there is encouraging news coming in from the athletics track with Santosh Kumar first booking his place in the men's 400 meters hurdles final, finishing second in his heat in 49.61 seconds. And now India has added two more finalists in the women's 400 meters hurdles with Vithya Ramraj and Anu Raghavan both making it through. Vithya produced a strong run clocking 55.73 seconds to finish third overall, while Anu Raghavan was right behind her, recording 55.84 seconds and taking fourth place overall. So three Indian athletes across the men's and women's 400 meter hurdles have now made it through to their respective finals.
0: डेकाथलॉन की बात करते हैं, जहां पर डिस्कस थ्रो के बाद तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। डिस्कस थ्रो में मुश्किल प्रदर्शन करते हुए तेजस्विन शंकर ने 36.77 मीटर की दूरी तय की और 599 अंक अर्जित किए। अब उनके कुल 5,869 अंक हो गए हैं और वो तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। चीन के चेन शिंगुआ 5,919 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि जापान के युमा मारियामा 5,914 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हुए हैं। तेजस्विन अब पोल वॉल्ट और भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
1: And now some results coming in from Kurash. It has been a difficult outing for India today, with all four athletes who competed seeing their Asian Games campaigns come to an end. In the men's plus 90 kilogram category, Yash Kumar Trohan lost his round of 16 bout 0-10 to Tajikistan's Mirmamadov. Vishal did make it through to the quarterfinals in the same category, but his campaign ended there after a 0-5 loss to Thailand's Yeon. In the women's 57 kilogram category, Sangeeta was beaten 0-10 by Philippines Quilino in the round of 32. Bharati also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Azer Vened. So four Indian Kurash athletes in action today and all four have been eliminated. There are still two more Indians to watch in Kurash on September 28 and September 29.
0: Vidushi, ab lambi kood ki baat kar lete hain. Udhar Mulli Shishankar ne 7.84 meter ki chhalang lagakar lambi kood के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हांगजाओ में हुए पिछले संस्करण में रजत पदक विजेता रहे शिशंकर ने शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाई है। प्रतियोगिता में भाग ले रहे अन्य भारतीय खिलाड़ियों में डेविड सोलेमन ने 7.62 मीटर की छलांग लगाकर सातवें स्थान पर रहकर पदक के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल कल यानी सोमवार को खेला जाएगा। यहीं पर एक और खबर दे देते हैं, बैडमिंटन की महिला युगल मिश्रित युगल के बाद महिला एकल में भी आज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अपने अपने मैच हार कर बाहर हो गए। अभी कुछ देर पहले समाप्त हुए महिला एकल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने एशियाई खेलों में अपने पदार्पण में मुकाबले में हार गई है। हालांकि उन्होंने 3 बार की विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी, लेकिन 16-21, 21-14, 17-21 से हार गई है। वहीं पर बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु अपना मुकाबला महिला एकल का खेल रही चेन यू फेई के खिलाफ और पहला गेम वो जीत चुकी हैं। यहां एक उम्मीद बची हुई है, क्या यहां पर पीवी सिंधु जीतकर भारत को खुशखबरी देती हैं?
1: Moving across to fencing, India's women's sabre team also saw their campaign come to an end in the quarter final. The Indian team featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin Jess and Shruti Joshi went down 35-45 to Uzbekistan. So after reaching the quarter final stage, the Indian women's sabre team could not make it through to the semi-finals. And now let's turn to shooting, where the trap competition continues. In the women's trap event, Neeru Dhanda is currently leading the individual standings at number 1. after 2 days of competition. She had hit 48 out of 50 targets on day one. India's women trap team has also finished day two in second position in the team standings, with Ashima Lawat currently at 16th position individually. In the men's trap event, Kenan Chennai had a perfect start, hitting all 25 targets in his opening round. He then managed 22 in the next round and is currently at 11th individually. Shapat Bhardwaj at 22, with Indian men's team finishing day one in 7th position in the team standings. And a live update coming from the precision round, Indian women's team is 3rd and 25-meter pistol and the rapid round to follow.
0: जी चलते आपको ये भी बता दें, महिलाओं की मैराथन रेस वॉक में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। प्रियंका गोस्वामी करीब 9 मीटर के बाद डिस्क्वालिफाई कर दी गई। वही मंजू रानी 3 घंटे 40 मिनट 17 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर ही। दोस्तों अब अगली अपडेट में आपसे मुलाकात होगी 12:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथी विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।

जब हम खबर सुनते रहते हैं, चाय की प्याली की चुस्की लेते रहते हैं और कभी कभी टीवी पे भी न्यूज देखते रहते हैं, तो अभी वही समय स्टूडियो क्लॉक में 10:49:20 और आज के ताजा खबर के समय का। और उसके बाद तो दोस्तों, संडे के इस खूबसूरत सुबह में अब वक्त है देश से जुड़ी कुछ खास बातों को सुनने का और समझने का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो प्रोग्राम यानी कि मन की बात, एक ऐसा मंच जहां देश के अलग अलग कोने से जुड़ी कहानियां, उपलब्धियां, प्रयास और जनभागीदारी की बातें हम तक पहुंचती हैं। और ये वही समय होता है जब पूरा देश सुन रहा होता है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन की बात को, उनकी मन की आवाज को, उनके नेतृत्व को। ऐसे ही सुनते रहिए, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ रंगीन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: The best of entertainment, information, education अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट. आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ.
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक. कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है.
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो. कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट. बस कुछ सेकंड्स का काम.
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है. सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें. ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग.
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ. तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है.
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से. RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को

0: सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
1: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं, मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा।

हमले हुए हों तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था, लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं

करना चाहते हैं, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही है। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों,
लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है. भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है. वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है. उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना. हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं. राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है. वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे. 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे. 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था. इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे. अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं. उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है. राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है. ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं. राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है. मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है. ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है. बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है. हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं. साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है. प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है. पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं. आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है. आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है. ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप. इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं. ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है. इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं. इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई. साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है. कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है. हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे. इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है. ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है. आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है. मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है. पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं
इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती।

कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर

వెల్కమ్ బ్యాక్ లిస్నర్. దిస్ ఇస్ ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9, రెయిన్బో కే సాత్ లైఫ్ హై రంగీన్, అండ్ ఐఎమ్ యూ ఆర్జే జాగృతి. తో హమ్ సున్ రహే థే మన్ కీ బాత్, ఆర్ ఉస్కే బాద్ న్యూస్. మన్ కీ బాత్ మే ఆజ్ మోదీ జీ నే బతాయా కి సెల్ఫ్లెస్ కేర్ క్యా హోతా హై, ODOP యాని వన్ డిస్ట్రిక్ట్ వన్ ప్రోడక్ట్, ఆర్ క్లీనినెస్ ఇండియా యాని స్వచ్ఛ భారత్ పఖవాడా, ఆప్కో తో యాద్ హీ హోగా జో 2 అక్టూబర్ తక్ హోతా హై. అండ్ దెన్ వోకల్ ఫార్ లోకల్ కి బాత్ కియా ఉన్హోనే కి कैसे हम स्थानीय उत्पादों का सहयोग करके या स्थानीय कारोबारों का सहयोग करके हम समाज में इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि समाज को कुपोषण मुक्त कैसे बनाना है, ऐसे बहुत सारी बातें की. और ऑब्वियसली हमारा 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026 चल रहा है, जो जापान में अभी इसको हेल्ड किया गया है, उसके बारे में हमें खबरें सुनने को मिली, सारे विजेताओं के नाम, प्रतिभागियों के नाम सुनने को मिला. और सबसे बड़ी बात, आज का डे, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे. जी हाँ, अब ट्रेवल का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? फ्लाइट्स, होटल्स, सूटकेस, गूगल मैप्स, और ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी सी एस्थेटिक पिक्चर्स. लेकिन टूरिज्म की स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है. वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है. इस डेट का कनेक्शन 27 सितंबर 1970 से है, जब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के स्टैचूज को अडॉप्ट किए गए थे. और टूरिज्म को अगर थोड़ा और अच्छे से देखें तो ये एक्चुअली इकॉनमी, कल्चर, हेरिटेज और लोकल कम्युनिटीज के बीच का एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है. चलिए समझते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद टूरिस्ट के लिए, हैदराबाद मतलब चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट, बिरयानी, पर्ल्स और ईरानी चाय. लेकिन हम हैदराबाद वालों के लिए ये वही चार मीनार है जिसके आसपास से डेली लोग ऑफिस जाते हैं, वही लेन्स है जहाँ किसी की दुकान है, वही चाय की टपरी है जहाँ किसी की रोज की मुलाकात होती है, वही हेरिटेज बिल्डिंग है जो किसी के लिए हिस्ट्री नहीं, एवरीडे लाइफ है. और शायद रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब यही समझाना है, हम किसी जगह को सिर्फ देखने नहीं जा रहे हैं, हम किसी और के होम, कल्चर और हिस्ट्री में टेम्पररी इंटर कर रहे हैं, उसको हम इंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं. तो ट्रेवल करते वक्त लोकल बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, अननेसेसरी वेस्ट अवॉइड कीजिए, हेरिटेज साइट को डैमेज मत कीजिए, सीक्रेट स्पेसेस के रूल्स को रिस्पेक्ट कीजिए, और लोकल आर्टिस्ट, गाइड्स और जो भी क्राफ्ट्स पीपल को होते हैं, उनको, उनके नॉलेज को वैल्यू कीजिए. क्योंकि जो अभी आप वहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे हैं, उस जगह के बारे में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो उन्हीं लोकल गाइड की वजह से है. तो ऐसे ही हम और भी बात करेंगे वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में. दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन. दिस इज योर आरजे जागृति, टेक इट अवे.

दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन एंड दिस इज आज जागृति. सो आज हम वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और सच बताऊँ मुझे इतनी सारी बात करनी थी टूरिज्म के बारे में, उस दोस्त के बारे में जो मतलब कोई एक जो ग्रुप होता है आपका व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप जिसपे वो बस वो अच्छे अच्छे प्लेसेस की रील भेजता रहता है. मतलब यहाँ चलना है यहाँ चलना है, और जब भी उसका स्टोरी स्टेटस आप देखेंगे ना वो कहीं ना कहीं घूम ही रहा होगा, कहीं पहाड़ों में कहीं नदी के किनारे, मतलब चल ही रहा है ट्रेन में फ्लाइट में. सो उसका रास्ता उसका बस्ता हमेशा रेडी रहता है एक नए रास्ते के लिए. लेकिन थोड़ा समय की पाबंदी है, बातों को विराम देना पड़ेगा. लेकिन थोड़ा सा और मैं एक एक लास्ट टॉपिक है ये टूरिज्म के लिए और कन्फेशन है, एक्चुअली बहुत ही पर्सनल कन्फेशन है. कभी कभी हम ट्रेवल को भी ना एक रेस बना देते हैं. सुबह 8 बजे मोन्यूमेंट, 10 बजे म्यूजियम, 12 बजे लंच, 2 बजे मार्केट, 4 बजे सनसेट पॉइंट, और रात को होटल पहुंच के लगता है यार मैंने देखा क्या. नहीं, इट्स टाइम फॉर स्लो टूरिज्म. स्लो टूरिज्म का सिंपल आइडिया है हर जगह को टिक मार्क करने की बजाय कम जगहों पर थोड़ा ज़्यादा वक्त स्पेंड करिए, क्योंकि जब आप कहीं दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हैं. ऐसा नहीं कि जैसे ऑफिस का रेस होता है, जैसे घर में कोई रेस चल रहा है, कोई जिंदगी का रेस है, वही रेस आप अपने टूरिस्ट अपने उस प्लेस पे जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. थोड़ा सुकून से रह के कहीं नदी के किनारे कहीं पहाड़ों में बैठ के थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिए, खुद को समय दीजिए. एक कैफे में बैठ जाइए, किसी ओल्ड लेन में स्लोली वॉक कर लीजिए, किसी लोकल आर्टिस्ट से बात कर लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से स्ट्रेस ट्रेवल कर लीजिए, लोकल शॉप से कुछ अपने लिए अपनों के लिए कुछ खरीद लीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ के लोकल को वहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करिए. और जब हम ट्रिप पे होते हैं ना तो एक एक ऐसे पर्सनालिटी को बाहर लेके आते हैं जो शायद हमने सोचा भी नहीं है. मतलब आपके जीवन का एक दूसरा जो पड़ाव होता है, एक दूसरा नजरिया देखने को मिलता है. जैसे आप अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं और कहीं गए हैं, वहां के जब आप लोकल को देखते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा जिंदगी ऐसे भी जी जा सकती है. तो जब आप किसी सिटी में जाते हैं तो सिटी को आप कंज्यूम नहीं, एक्सपीरियंस कीजिए, जितना समय हो खुद को दीजिए. ऐसे और भी बातें करेंगे और गाने भी सुनेंगे. जो अगला गाना मैं बजाने जा रही हूँ है मेड इन इंडिया बाई अलीशा चनोय.

दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। जी हाँ, हम बात कर रहे थे वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में, और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि अगर आप किसी दूसरे सिटी या फिर स्टेट या फिर मे बी कंट्री में जाते हैं तो क्या वहाँ से आप क्या लेके आते हैं। तो वो ऐसे कोटेशन मैं पढ़ती हूँ, परहैप्स दैट्स द रियल मैजिक ऑफ ट्रेवल, यू लीव योर सिटी फॉर ए वाइल एंड रिटर्न सीइंग योर ओन सिटी अ लिटिल डिफरेंटली। मतलब जब आप वापस आते हो तो सिटी को थोड़ा अलग देखने लगते हो, क्योंकि जब आप ट्रेवल करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आप किसी दूसरे सिटी में जाकर देखते हैं कि वहाँ पब्लिक स्पेसेस कैसे हैं, ट्रैफिक कैसे मैनेज हो रहा है, लोकल फूड कैसे प्रिजर्व होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग्स कैसे रीयूज होती है। और जब आप घर लौटते हैं तो बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव थॉट्स और न्यू आइडियाज़ के साथ लौटते हैं, क्योंकि जो आप वो चाय पीते समय किसी एक नो लोकल चाय वाले से बात किया था कि आपकी दुकान यहाँ कब से है, या फिर वो जो कार्ट्समैन थे जिनका आपको वो ज्वेलरी बहुत अच्छा लग गया था, आप उनसे पूछ रहे हैं कि ये आप कब से बना रहे हैं, वो जो आपने कंगन लिया था अपनी मम्मी के लिए और कहा मम्मी ये कंगन यहाँ का स्पेशल है, आप उस कंगन को लेते समय भी उस पर्सन से बात किया जो वो बेच रहा था कि आप कैसे बनाते हैं। तो आप एक हिस्ट्री साथ लेके आते हैं, एक एक्सपीरियंस साथ लेके आते हैं। आकाशवाणी पे वाणी को विराम करते हुए चलिए सुनते हैं अगला गाना, और हम और भी गाने सुनेंगे।

0: This is आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। चलिए एक सेकेंड के लिए इमेजिन करते हैं एक रिवर, कोई जायंट सिनेमेटिक रिवर नहीं, बस पानी का एक मूविंग लाइन, कभी शांत कभी तेज, कभी पतली कभी चौड़ी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिवर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो सिर्फ पानी नहीं होती, वो हिस्ट्री कैरी करती है। आज 27 सितंबर है और आज ऑब्जर्व किया जा रहा है वर्ल्ड रिवर्स डे। रिवर्स के किनारे सेटलमेंट्स डेवलप हुए, फार्मिंग सिस्टम बने, ट्रेड रूट्स निकाले, सिटीज ग्रो हुई और कल्चर्स एक दूसरे के कनेक्ट हुए। मतलब एक रिवर को समझना कभी कभी एक पूरी सिविलाइजेशन को समझने जैसा लगता है। और रिवर की पर्सनालिटी भी फिक्स नहीं होती, मानसून में वही रिवर पावरफुल हो सकती है और समर में वही उसका फ्लो बहुत ही शांत और कम रहता है। इसीलिए जब हम फ्लडिंग की बात करते हैं तो स्टोरी सिर्फ बहुत ज़्यादा बारिश की नहीं होती, उसके पीछे रेनफॉल, सॉयल, वेटलैंड्स, ड्रेनेज और कई सारे कनेक्शंस होते हैं। तो आज हम जैसे कि वर्ल्ड रिवर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमें अपनी कोई ऐसी मेमोरी बताइए जो कभी आपने किसी रिवर के किनारे बैठ के ऐसे सोचा था, कुछ नए आइडियाज आए थे और कभी किसी के साथ, किसी यार दोस्त के साथ कुछ कुछ मेमोरीज ताजा किए थे या चाय की चुस्की लिया था। और हमारा फोन नंबर है जिसपे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं, 4023234822। जी हाँ, आप बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, हम उसे पढ़ते हैं, तो देर किस बात की। और आप बताइए उस खूबसूरत मोमेंट्स के बारे में, और जब हम आपसे बात करेंगे अपने लाइव इन फोन इन प्रोग्राम में हम उस एक्सपीरियंस को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप बिजी हैं या फिर खाना खा रहे हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आज तो वर्ल्ड ट्रैवल डे भी तो है, तो आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है जब हम आपका मैसेज पढ़ते हैं। तो दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन एंड दिस इज टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक।
1: ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు. ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మీ ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది. మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్, 3 ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్స్ తో అడిషనల్ సర్వైవల్ బెనిఫిట్, ఇందులో ఆటో కవర్ కూడా ఉంది. ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా మహిళల కోసమే. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాథ్.

वेलकम बैक लिसनर, दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन एंड दिस इज योर आज जागृति। सो आज हम वर्ल्ड रिवर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रिवर का काम क्या है, चलिए हम रिवर से एक छोटा सा लेसन, छोटा सा ज्ञान जो हमें नदियाँ हमें देती हैं वो सीखते हैं। उसका काम क्या है, फ्लो करना, उससे हर वक्त डेस्टिनेशन की टेंशन नहीं होती। कभी वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, कभी टर्न लेती है, कभी स्लो होती है, कभी फास्ट, कभी रॉक्स के अराउंड अपना खुद का रास्ता बनाती है। और शायद ह्यूमन लाइफ को भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। हम प्रोग्रेस को अक्सर स्पीड से मेजर करते हैं, कितनी जल्दी जॉब मिली, कितनी जल्दी प्रमोशन हुआ, कितनी जल्दी डेस्टिनेशन अचीव किया, लेकिन रिवर हमें याद दिलाती है स्लो मूवमेंट भी मूवमेंट होता है। और रिवर की एक और ब्यूटीफुल क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है अपने आसपास की दुनिया को कनेक्ट करती है। उसके किनारे विलेजेस, फार्म्स, सिटीज और कल्चर्स का डेवलपमेंट होता है। सॉन्ग्स में रिवर आते हैं, पोएट्री में रिवर आती है, स्टोरीज और ट्रेडिशन में रिवर्स आती है। और हमारे एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध

कवि हैं, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उनको प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है क्योंकि जो उन्होंने कविताएं लिखी है नदियां पहाड़ों इस पे लिखा है। और अगर हम भारत की नदियों की बात करें तो गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी, ये हमारी नदियां हैं। इनके साथ जनरेशन की कल्चर मेमोरीज जुड़ी होती हैं, इसलिए वर्ल्ड रिवर्स डे सिर्फ कंजर्वेशन की बात नहीं करता, रिवर कंजर्वेशन की बात नहीं करता, इट ऑल्सो रिमाइंड अस टू नोटिस वॉट कीप्स अस कनेक्टेड। और नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिवर या लेक या इवन एक स्मॉल वाटर स्ट्रीम के पास हो, थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, उसे सिर्फ एक वाटर बॉडी की तरह मत देखिए, सोचिए ये पानी कहाँ से आया होगा और कहाँ जा रहा होगा और कितनी लाइफ्स को टच करता होगा। एंड मे बी समटाइम्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अ प्लेस इज सिंपली टू फॉलो इट्स वाटर। अगर आप अपनी लाइफ के एक रिवर की तरह, अपने लाइफ को एक रिवर की तरह डिस्क्राइब करते हैं, तो कैसा है आज का दिन आपका? तेज, स्लो कि बस मूवमेंट हो रहा है? तो आप बता सकते हैं कि कैसा है इस स्पेस के हिसाब से, जैसा कि हम रिवर से इतनी सारी नॉलेज की बातें कर रहे थे कि हमें उससे क्या सीखना चाहिए, स्लो हो तेज हो, ठीक हम टर्न भी ले सकते हैं, तो आप भी अपने लाइफ की स्टोरीज हमें बता सकते हैं। और हमारा इंस्टेंट व्हाट्सएप नंबर है 4023234822। और स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो चुका है 1:07:15 और शायद हमारा हेलो रेनबो का भी सेगमेंट शुरू हो चुका है। जी हाँ, जहाँ हम बस अपनी मन की बात नहीं करते, वहाँ हम आपके मन की बात भी सुनते हैं, जहाँ पे बातों की जुगलबंदी। और ये वही सेगमेंट होता है जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा समय और होना चाहिए, थोड़ा मुझे और कॉल्स लेने चाहिए, इतनी सारी बातें होती हैं। और चलिए आज का टॉपिक भी बता देती हूँ, बातों बातों में इतने सारे रिवर्स की बात किया, टूरिज्म की बात किया कि मैं तो टॉपिक बताना भूल ही गई। तो टॉपिक ये है कि जो आप लास्ट टाइम किस टूरिस्ट प्लेस पे गए थे, उसकी बेस्ट मेमोरी क्या है। हमारे फोन इन लाइन ओपन है और हमारा नंबर है 4040, क्षमा चाहती हूँ, 0402323 0030। दूसरा नंबर है 0402323 4821। एक और नंबर भी है 0402970471। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। टॉपिक फिर से बता देती हूँ कि आपका जो लास्ट टूरिस्ट प्लेस था जहाँ आप घूमने गए थे, वहाँ की सबसे खास मेमोरी क्या है। और अभी के लिए चलिए सुनते हैं ये गाना पानी दा रंग देख के, जो आयुष्मान खुराना जी ने गाया है।

अपडेट में मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ है मेरे दोस्त विदुषी वत्स। विदुषी, जैसा कि हम पिछली अपडेट में बात कर रहे थे, भारत के जो मेडल हैं वो अभी कुछ खास नहीं, लेकिन इस घंटे की अपडेट में बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत खास मेडल आया है भारत के लिए। बताना चाहूंगा महिलाओं के जो बात करें तो अभी मुकाबले शुरू होने अनाहत सिंह उतरेंगी, लेकिन उससे पहले एक और खबर आ गई है। एशियाई खेलों में भारत के अभय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल स्क्वाश में रजत पदक अपने नाम कर लिया। जी हां, फाइनल में अभय सिंह को मलेशिया के एनईओ के हाथों 9-11 5-11 5-11 से शिकस्त का सामना करना पाए। स्क्वाश का मुकाबला था, लेकिन यहां पर उम्मीद जरूर थी अभय सिंह यहां पर गोल्ड जीतेंगे, लेकिन

0: से मलेशियाई खिलाड़ी ने उन्हें लगातार 3 गेमों में लगातार हराकर जीत दर्ज की, इसलिए उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अभय ने मुकाबले में जोरदार शुरुआत की और कई मौकों पर अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी चुनौती दी। तीसरे गेम में भी उन्होंने शुरुआत में बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन एनईओ ने जल्द ही अपनी लय हासिल कर ली, मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। इस जीत के साथ ही एनईओ लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों का पुरुष एकल खिताब अपने नाम कर लिया, जबकि अभय सिंह को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं अनाहत सिंह, जिसका मैंने जिक्र किया था, सबसे ज्यादा उम्मीदें अनाहत सिंह पर है। महिला एकल के फाइनल मुकाबले में सिंह सुवारी सुब्रमण्यम के खिलाफ उतरेंगी भिड़ेंगी। यहां भारतीय जरूर उम्मीद करेंगी गोल्ड मेडल यानी पीला तमगा है, लेकिन हाँ आज का दूसरा पदक आ चुका है। इससे पहले आपको बता दें अंकुश पंघाल ने 80 किलोग्राम वजन वर्ग में पदक पक्का किया सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए। आज का दूसरा पदक यानी 2 पदक भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं।
1: With these two brilliant news, we can absolutely say that it is in total a very mixed day for India today. So now we take a complete update from women's specific draw, where India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. South Korea took the opening game 15-8 before winning the second 15-3 to wrap up the match in straight games. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines, and they came away with another state games victory for Philippines, winning 15-12, 15-6. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2.
0: घुड़सवारी की बात कर लेते हैं। आईसी नागोया में भारत का जो घुड़सवारी का अभियान है वो समाप्त हो गया। जी हाँ, एशियन गेम्स में जिस तरह से उम्मीद की थी, पिछली बार जिस तरह प्रदर्शन था वैसा प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिला। हृदय छेदा 72.680 के स्कोर के साथ इंडिविजुअली ड्रेसेस फाइनल में 8वें स्थान पर रहे, जबकि उनके साथ ही जयसूद 71.490 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर रहे। हाँ, यहाँ पर एक और खबर देते हैं, इंडिया वर्सेज वियतनाम। जी हाँ, भारत बना वियतनाम का जो वॉलीबॉल का मुकाबला चल रहा, भारत ने 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। अगर बताएं पहले सेट की बात करें तो भारत ने 25-23 से वहां पर अपना जो सेट था वो जीता था। जेरेमी विनीत ने पहले सेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 अंक अर्जित किए थे। यहां पर भारत ने अब 2 जो सेट है अपने नाम कर लिया। पहला सेट जैसा मैंने बताया 25-23 से, दूसरा सेट 23-18 से जीत लिया, यानी दूसरे सेट में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन किया है और देखना है कि भारत आगे किस तरह प्रदर्शन करेगा। हालांकि अब स्कोर ताजा अपडेट बता दे, दोनों के तीसरे सेट में 1-1 अंक बने हैं। विदुषी,
1: absolutely, now let's move on to the surfing update of the day, where India has had mixed results in the women's and men's shortboard events. Starting with the women's competition, Kamali Murthy was in action in round 3 against Indonesia. She scored 5.93 across 2 waves, while her Indonesian opponent finished with 11.64, bringing Kamali's campaign to an end. Now Shanti Sugargayan also bowed out in round 3 up against Japan. Sugar finished with 5.17, while her Japanese opponent scored 14.60. So both women Indian surfers have now exited the competition after reaching round 3. Moving on to the men's event, Sivaraj Babu was in action in round 2, where he faced Iran's Khadir. Sivaraj produced a strong score of 8.96, comfortably ahead of Khadir's 3.60. And we also mentioned Kishore, who is already qualified to round 3. So both Kishore and Sivaraj are now through to round 3. But that stage is yet to take place and is scheduled for tomorrow.
0: ये बताते हुए श्रोताओं की भारत के 4 गोल्ड, 13 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज समेत 31 पदक हो गए। अगले 1 घंटे बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
4: ఒక మంచి పుస్తకం మనకు కొత్త

वेलकम बैक लिसनर, दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। जी हाँ, हम बात कर रहे थे 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026 बीइंग हेल्ड इन जापान। यस, और कितने सारे विजेता आ रहे हैं, मतलब हम हर घंटे हमें न्यूज अपडेट्स मिल रहे हैं। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जिस भी खेल को, जिस भी गेम को फॉलो करते हैं, उसे ध्यान से देखिए, उसे टीवी पे देखिए, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, भारत को सपोर्ट कीजिए। जी हाँ, पहले कहते थे ना कि खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे नवाब। जी नहीं, अब उल्टा हो गया है। अब हर चीज हो रहा है कि आप खेलेंगे तो खिलेंगे। तो अपने टीम को सपोर्ट करिए, भारत को सपोर्ट करिए, और हर घंटे आपको एशियन गेम का अपडेट्स भी मिलता रहेगा। तो अब चलिए बात करते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की, और समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं ये टॉपिक आपसे बहुत अच्छे से शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती। आप कहेंगे कैसे कैसे जागृति की कम्युनिकेशन, मतलब तो बोलना होता है ना। जी नहीं, कभी आपने सोचा है हम कम्युनिकेशन को कितना नेचुरली साउंड से कनेक्ट करते हैं? बात करना मतलब बोलना, सुनना मतलब समझना, लेकिन कम्युनिकेशन की दुनिया इससे बहुत बहुत बड़ी है। आज 27 सितंबर है और आज इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल का फाइनल डे है। इस वीक का एक इम्पॉर्टेंट फोकस है डेफ पीपल के राइट्स, रिकॉग्निशन और साइन लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस। और सबसे पहले एक मिथ क्लियर करती हूँ, साइन लैंग्वेज स्पोकन लैंग्वेज का हैंड वर्जन नहीं है, इट इज कंप्लीट लैंग्वेज। इट इज अ कंप्लीट लैंग्वेज, अपनी ग्रामर, स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशंस और कल्चर हिस्ट्री के साथ होती है ये। और दुनिया में कोई एक यूनिवर्सल साइन लैंग्वेज भी नहीं है, जैसे हमारे पास हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश और काउंटलेस स्पोकन लैंग्वेजेस हैं, वैसे ही डिफरेंट कम्युनिटीज के डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूडिंग इंडियन साइन लैंग्वेजेस, अमेरिकन साइन लैंग्वेज एंड ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज की ब्यूटी ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ हैंड से नहीं होती, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, स्पेस, अटेंशन, सब सबका एक एक मीनिंग होता है, सबका अलग अलग पार्ट होता है। और लैंग्वेज सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की मीडियम नहीं होती, लैंग्वेज लैंग्वेज से आइडेंटिटी बनती है, कल्चर बनता है, ह्यूमर बनता है, रिलेशनशिप स्टोरीज और मेमोरीज शेयर होती हैं। इसलिए डेफ कम्युनिटीज को सिर्फ ये कहना कि आपको सुनाई नहीं देता, इस लेंस से देखना इनकम्प्लीट है। उनकी लैंग्वेज और कल्चर को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। और सोचिए, अगर रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो रहा हो, हॉस्पिटल में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो, या किसी पब्लिक इवेंट में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही हो और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑडियो में अवेलेबल हो, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है। तो प्रॉब्लम किसी इंडिविजुअल की नहीं है, प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन के डिज़ाइन में हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी को कोई फेवर नहीं कर सकता, इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर दैट इंफॉर्मेशन कैन एक्चुअली रीच पीपल। और एज अ रेडियो स्टेशन, ये थॉट हमारे लिए और भी मीनिंगफुल है। हम साउंड के थ्रू कनेक्ट करते हैं, लेकिन हर लिसनर का जो रिलेशनशिप साउंड के साथ सेम नहीं होता। तो आज एक सिंपल रिमाइंडर, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना और सुनना नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे तक पहुंचना, उनके इमोशंस तक पहुंचना, उनके भावों तक पहुंचना, उनके विचार तक पहुंचना, ये कम्युनिकेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल कम्युनिकेशन। और ऐसे ही बहुत सारे गाने सुनेंगे, बातें करेंगे और सब

0: जाता है आपसे विदा लेने का, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं थोड़ा और बात कर लूँ, थोड़े और कॉल्स ले लूँ, देखते हैं अभी कौन है हेलो रेनबो पे। हेलो रेनबो,
1: हरिओम हरिओम। हाँ
0: हरिओम, अपना
1: जी,
0: नाम बता
1: मैं विलास,
0: दीजिए और आप कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं विलास तेंदुलकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बात कर रहा हूँ।
0: जी
1: आज का विषय आपने कहा है कि आप कहाँ घूमने गए थे और उस समय की विशेष बात क्या रही, तो
0: जी
1: इस विषय पर बोलना चाहूंगा। आज से लगभग 10 वर्ष के पहले की बात है, हम 50 लोग इकट्ठा होकर के नर्मदा परिक्रमा करने गए थे।
0: अच्छा, नर्मदा
1: नर्मदा
0: गुजरात।
1: नर्मदा नदी जो है उसके तट अलग अलग जगहों पर होते हैं,
0: हाँ
1: कुछ तो महाराष्ट्र में है, कुछ मध्य प्रदेश में है। तो हम नर्मदा परिक्रमा करने गए थे। हर तट पर हम जाते थे, वहां पर नर्मदा मैया की पूजा होती थी और उसकी आरती उतारते थे, और उसके बगल में जितने भी पुराने धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक मंदिर हैं, वहां के हम दर्शन करते थे और फिर अगले तट की ओर प्रस्थान करते थे। तो वहां पर एक विशेष घटना ये हुई, ये जो हमारा कार्यक्रम था ये 10 दिनों का था, जिसमें जहां पर भी हम जाते हमारा हमारी चाय हम अपने लिए बना लेते थे, और हमारा भोजन, हमारा नाश्ता सब कुछ रास्ते में हम रुक जाते थे और वहां पर ही सब बना करके भोजन करके फिर आगे के लिए हम प्रस्थान करते थे। एक जगह ऐसे हुआ के एक बहुत पुरातन मंदिर है शिव जी का, वहां हम दर्शन करने गए और हमारे भोजन का समय हो गया, और उसी समय हमारे साथ में जो गैस सिलेंडर था उसमें गैस समाप्त हो गई। तो अभी प्रश्न गया कि भाई भोजन का कैसे करें, 50 लोगों का भोजन है। तो जहाँ शिव मंदिर में हम गए थे वहां पर भोजन दिया जाता था, लेकिन उनका समय समाप्त हो चुका था तो वहां पर हमको भोजन नहीं मिला। हम उस मंदिर के बाहर आकर के ऐसे विचार कर रहे थे, इस बीच हुआ है कि एक व्यक्ति गाड़ी पर हमारे पास में आया और बोले आपको भोजन करना है। तो हमने कहा हाँ भैया, देखो ये आगे की गली से जाइए, वहां पर भोजन की व्यवस्था है, एक अच्छा आश्रम है, आप वहां जाइए, आपको भोजन मिल जाएगा। तो ये भगवान नर्मदा मैया की कृपा ही थी कि हम सब वहां चले गए और हमारे सारे 50 लोगों को भोजन वहां पर प्राप्त हुआ। ये नर्मदा मैया की कृपा है, और ये जो बात है इस बात को 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं उस बात को भूला नहीं हूँ।
0: बहुत ही अच्छा लगा, आपने अपनी कहानी, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किया हमारे साथ, और अच्छा लगता है जब ऐसे कुछ सिचुएशन में हमारी हेल्प हो जाती है और हमें एक आस्था से जुड़ने का मौका मिल जाता है।
1: हाँ जी, हाँ जी, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हेलो रेनबो में कॉल करने के लिए। कितनी अच्छी बातें बताते हैं, और ऐसे सिचुएशन में ना कोई भी अगर हेल्प मिल जाए, और आज हमारे मन की बात में भी मोदी जी ने बताया था कि कैसे सेल्फलेस केयर कैसे करते हैं लोगों का। कोई भी अगर आपका है, आप रास्ते में हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, कोई जर्नी में हैं, अगर थोड़ी सी मदद अगर आप उनकी कर देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए हम कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं। ये है अश्विन जी का फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद ना पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊंगा। ये उन्होंने वक्त के बारे में बताया, बहुत अच्छा है। एक और मैसेज है, समय और शब्द दोनों अनमोल होते हैं, एक लौट कर नहीं आता, दूसरा लौटाया नहीं जा सकता। वाह, ये तो बहुत बड़ी बातें की हैं। और एक और मैसेज भी है खुदा का, बाबा नगर बाला नगर से आई गेस। हाय जागृति जी, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छी हैं। हमें घूमने का बहुत शौक है लेकिन ज़्यादा घूम नहीं पाए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं घूम पाती हूँ। एक एक याद है जो हमारे दिल के करीब करीब वो भूल नहीं सकते, वो ऑन एयर भी नहीं बता सकते। ओहो, कोई बात नहीं, ऐसे होते हैं कुछ यादें जो हम अपने दिल में दफना के रखते हैं। एक हुनर सीख गए हम, सबके दिल में उतर गए हम। वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लिखा आपने। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं सब। गुड आफ्टरनून जागृति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, और नमस्ते जागृति जी। इन्होंने जो मैसेज लिखा है बहुत अच्छा है, इन्होंने जो हमारा ट्राई कलर है ना उसके

हार्ट बना के मैसेजेस में लिखे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सप्रेसिव लग रहा है कि तिरंगा लिख के ऐसे आ रहा है। नमस्ते आर्य जागृति मैडम, हैप्पी हैप्पी डे टू यू, शुभकामनाएं आपको। मैं, मेरा नाम हिंदुस्तानी दिल से हैदराबाद इकबाल जी। करता रहा फरेब कोई सादगी के साथ, करता रहा फरेब कोई सादगी के साथ, इतना बड़ा मजाक मेरी जिंदगी के साथ। शायद मिली सजा इस जुर्म की मुझे, हो गया था प्यार मुझे एक अजनबी के साथ। वाह वाह, कितना मजा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपने मैसेजेस लिखे हैं। ऐसे ही जब आप इतने सारे मैसेजेस लिखते हैं और अपने इमोशंस लिखते हैं, तो मैं पढ़ते पढ़ते खुश हो जाती हूँ और हंसने भी लगती हूँ। और फिर और ऑल टाइम फेवरेट हमारे हैं हमारे रेडियो मैन, उन्होंने मुझे फिर से रेडियो का फोटो भेजा है, कैसेट का फोटो भेजा है। शरवर अली सर, सर आपके मैसेजेस और कैसेट्स और रेडियो के कलेक्शंस की मैं मुरीद हूँ। मैं जब भी देखती हूँ, मैं सोचती हूँ काश मेरे घर में भी होते। और कभी मौका रहा तो मैं ज़रूर आके आपके सारे कलेक्शंस को देखूंगी। और टाइम इन द स्टूडियो क्लॉक इज़ 1:47। हेलो रेन, वो भी इतने सारे बातें हमने कर लिया, इतने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिया। कभी कभी कहता है कि काश थोड़ा और समय मिल जाए, काश थोड़ी और बातें कर लूँ, काश थोड़ा और सेगमेंट मैं ले लूँ। बट होता है ना कि एक समय समय जैसा हमारे कुछ श्रोताओं ने बोला कि समय का कोई वो नहीं, वो आता है चला जाता है। तो ऐसे शायद मेरे जाने का भी समय धीरे धीरे आ गया है। लेकिन चलिए सुनते हैं एक और गाना। जैसा कि हमने बताया कि ये जो वीक था डेफ पीपल को डेडिकेटेड था, तो प्लीज़ अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो आप उनकी मदद करिए। आज हमारा सुबह 10 से 10:30 प्रोग्राम भी था, जो मनुश्रुत, डॉक्टर मनुश्रुत के साथ था। उन्होंने बताया है कि क्या उपचार हैं, वो ENT स्पेशलिस्ट हैं, और हेयरिंग का पूरा उन्होंने कैसे इसको रोका जा सकता है, अर्ली सिम्टम्स क्या है, वो सब के बारे में बताया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्पेशल इंसान है, स्पेशल एबल्ट इंसान है, तो आप उनकी मदद करें समझने में, मदद करें। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन क्यों, सुनने से कम्युनिकेशन नहीं होता, किसी की भावों, उसके इमोशंस, उसके विचार को समझना भी कम्युनिकेशन होता है। दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो के साथ लाइव फॉर रंगीन। टेक इट अवे।

इतने सारे कॉल्स आते हैं, लेकिन समय की पाबंदी रहती है। अगर आपका कॉल मेरे से मिस हो गया है तो उसके लिए क्षमा हूँ। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, अगर छोटी मोटी गलती भी हुई हो तो उसे क्षमा करें। और ऐसे ही अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बी काइंड टू एनिमल्स एंड काइंडनेस डजेंट कॉस्ट यू एनीथिंग। और अगर कोई आपके आसपास टफ पीपल हैं, स्पेशली चैलेंज्ड पीपल हैं, स्पेशली एबल्ड पीपल हैं, तो उनकी हेल्प करिए, उनकी मदद करिए। ये पूरा वीक उनको डेडिकेटेड था, क्योंकि जो सेल्फलेस केयर होता है ना, सबसे अच्छा होता है। और खुद का भी ध्यान करिए। और आज हमने रिवर्स से क्या सीखा है कि जो हमारा जीवन है कभी एक स्ट्रेट नहीं होता, रिवर्स हमेशा मूवमेंट होता रहता है, चाहे वो छोटा मूवमेंट हो या बड़ा मूवमेंट हो। तो डेस्टिनेशन की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और जीवन को जीना चाहिए। सो दिस इज आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9, रिम के साथ लाइफ रंगीन। और दिस इज योर आरजे जागृति साइनिंग ऑफ।

0: It means that India's medal tally has now moved up again. We now have 32 medals in total, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze.
1: Vidushi, एक मेडल और इसमें ऐड कर लीजिए. वो कैसे बताता हूँ. महिलाओं के 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो बॉक्सिंग का मुकाबला था, वहाँ क्वार्टर फाइनल में भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमुआ को 5-0 से हरा दिया है. परवीन ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक और प्रभावी बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया. पहले राउंड में उन्होंने 4-1 की बढ़त बनाई. इसके बाद दूसरे राउंड में प्रवीण ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए सभी जजों से 5-0 का फैसला अपने पक्ष में कराया. तीसरे और अंतिम राउंड में भी प्रवीण ने अपना दबदबा कायम रखा. 5-0 के स्कोर के राउंड से जो 5-0 का स्कोर था उसके साथ अपने पक्ष में किया. इस तरह तीनों राउंड में जो तीनों राउंड का प्रदर्शन था उसके आधार पर जजों के सर्वसम्मत फैसले से प्रवीण ने 5-0 से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ प्रवीण ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. भारत के लिए एक पदक और सुनिश्चित हो गया है. आपको यह भी बता दें कि आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में पदक पक्का किया था.
0: Didn't we say this is a day of twists and turns and welcoming of medals? So as we continue this roller coaster of an update, it is important to remind you of another one of the brightest stories from today's action. That is, alongside the silver medals coming in from squash and other sports, the Indian archery contingent has given us plenty to celebrate as well, with strong performances across both recurve and compound. If we take a look at how Indian archers have made it a really encouraging day, is when in recurve men's team defeated China and booked their place in semi-finals. The women's team defeated Chinese Taipei and did the same. The mixed recurve team beating Vietnam after an earlier victory over the UAE, which means three Indian recurve teams are now through to the semi-finals. But the good news still does not stop there, because the compound teams have also reached the semi-finals like that. And we now have the semi-finals match that we look up to on September 30th for compound and on October 2nd for recurve events. So after the excitement and silver medals from squash, this is another really bright spot for India today.
1: बात कर लेते हैं वॉलीबॉल की, जहां भारत को जीत हासिल हुई. एशियाई खेलों के पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी के मुकाबलों में भारत जिस तरह से प्रदर्शन कर रहा है उसको कौन देखते हुए आज का जो मुकाबला था बेहद खास था. वियतनाम को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. भारत ने पूरे मुकाबले में दबदबा बनाए रखा और तीनों सेट अपने नाम कर लिए. पहले सेट में भारतीय खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबले के बाद 25-23 से बाजी मारी. दूसरे सेट में भी भारत ने अच्छी लय बरकरार रखी, 25-21 से जीत दर्ज की. और तीसरे सेट में भारत ने शुरुआत से जो बढ़त बनाए रखी थी उसे जारी रखी और 25-20 से सेट अपने नाम कर 3-0 से मुकाबला जीत लिया. इस जीत के साथ ही भारत ने पुरुष वॉलीबॉल के पूल सी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. भारतीय टीम अब अपने अगले मुकाबले में हांगकांग चीन का सामना करेगी. यह मैच 28 सितंबर यानी कल खेला जाएगा. खबरें और हैं, लगातार मुकाबले जारी हैं, लेकिन फिलहाल इस घंटे की अपडेट में इतना ही. मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए. अगले घंटे फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए धन्यवाद.
2: एशियन गेम्स

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: आज के पक्ष में दिया। सचिन ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में करने की कोशिश की, लेकिन किताबोतो ने अपनी लंबाई, रक्षात्मक तकनीक और सटीक पंचों के जरिए भारतीय मुक्केबाज पर दबाव बनाए रखा। सचिन अपनी लय हासिल नहीं कर सके और मुकाबले के दौरान उन्हें वापसी का कोई भी मौका नहीं मिला। इस हार के साथ सचिन सिवाच पदक से एक कदम दूर रह गए। इससे पहले आज महिला 65 किलोग्राम भार वर्ग में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था, वहां भारत की परवीन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्बेकिस्तान के नवखोर खादिमों को 5-0 से हरा दिया। परवीन ने पहले राउंड में 4-1 की बढ़त हासिल की। उसके बाद परवीन ने अगले दोनों राउंड 5-0, 5-0 से जीतकर तीनों राउंड के प्रदर्शन के आधार पर जजों ने सर्वसम्मत से परवीन को 5-0 के से विजेता घोषित कर दिया। इस जीत के साथ परवीन ने महिला 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत के लिए एक पदक और भी पक्का उन्होंने कर लिया। आपको यह भी बता दें, इससे पहले आज ही अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए भारत का बॉक्सिंग में एक और पदक पक्का किया था।
1: Now that we have looked as to all the matches that have taken place, all the disciplines that have happened, it's important to look as to what we have in the next few hours. Right now, right at this moment, the Indian women's hockey team is taking on Singapore with their Pool B match getting underway. Also in athletics, the women's long jump final is getting underway right now with Shaili Singh and Nancy Sojourn in action. Later today at 3:55, we have Harita and Unnati line up in the women's 200 meter final, followed at 4:05 by Animesh Kujur in the men's 200 meter final. Furthermore, we also have men's high jump final where Sarvesh and J. Adarsh Ram will be looking to challenge for the medals. And later, we also have women's 100 meter hurdles final where Nandini will be competing for us.
0: जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण मुकाबले बाकी हैं और यहाँ पर भारत जीतता है तो यकीनन उसके जो पदक का जो तालिका है उसमें इजाफा होगा और भारत की जो अभी रैंकिंग उसमें भी इजाफा होगा। फिलहाल अगर बता दें जो पदक तालिका चल रही है उसमें चीन सबसे ऊपर है, 114 गोल्ड और इसके अलावा 44 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज समेत 191 पदक के साथ सबसे ऊपर है। जापान दूसरे स्थान पर 33 स्वर्ण, 54 रजत और 55 कांस्य समेत 142 पदक जीते हैं, जबकि कोरिया के नाम 18 स्वर्ण, 22 रजत और 38 कांस्य समेत 78 पदक। वहीं भारत 12वें स्थान पर है, 4 स्वर्ण, 14 रजत, 14 कांस्य समेत 32 पदक भारत के खाते में यानी भारत की झोली में आ चुके हैं। और क्या अगले एक घंटे में होता है बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है, घंटे बाद 4:30 पर। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और विदुषी वत्स को इजाजत दीजिए, अगले घंटे बाद मुलाकात होगी। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: Hey, did you know the Kakatiya Kalatoranam is more than just a monument?
4: Really? Tell me.
3: That's what Telanganam is all about. Stories of our land, our art, our cinema and our people.
4: Wow, so it's like a cultural adda on radio.
3: Exactly. Every night at 8 PM on FM Rainbow 101.9.
5: Telanganam. Telangana's heartbeat on air.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: From the rocks of Bongir to the lakes of Warangal, Telangana sings its story.
3: In every folk song, every dance, every reel of cinema, the spirit of our land shines.
4: And every evening, 8 to 9, Telangana brings that spirit alive on FM Rainbow 101.9.
2: History,
3: art,
2: literature, tourism,
3: cinema,
2: culture, all woven together in one vibrant hour.
4: Telangana,
3: the voice of our home state.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: जैसे जैसे शाम ढल रही है एशियन गेम्स से भारत के लिए कई अच्छी खबरें आ रही है, उन खबरों को बताने के लिए एक बार फिर हाजिर हैं हम। मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी, मेरे साथ हैं विदुषी बस से। तो चलिए इस घंटे के अपडेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं भारत की झोली में जो पदक आया। जी हाँ, एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स से भारत के लिए एक और पदक पक्का हो गया है। महिला 100 मीटर दौड़ के फाइनल में भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालते हुए तीसरे स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। हरिता ने पूरे फाइनल में दमदार चुनौती पेश की और पोडियम पर जगह बनाकर भारत की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की दूसरी धाविका उन्नति बोलन भी फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन छठे स्थान पर रहते हुए उन्होंने अपना जो अभियान था वो समाप्त किया। इस तरह महिला 100 मीटर में भारत के खाते में ब्रॉन्ज मेडल आया और एथलेटिक्स में देश की पदक की संख्या में इजाफा हुआ। जिस तरह से हरिता भद्रा ने दिल्ली में इंडिया ओपन में भी प्रदर्शन किया था और यहीं पर उन्होंने अपनी बातचीत में आकाशवाणी से बताया था, मैं 23 से ऊपर अगर एशियन गेम्स में करूंगी तो यकीनन पोडियम फिनिश करूंगी, और ऐसा ही उन्होंने कर दिखाया।
2: And what a moment for India, what a moment for India. Another medal coming in athletics, and this is turning into a day where the Indian contingent is really showing its strength across disciplines. We have already seen the silver medals in squash from Abhay Singh and Anahat Singh, and now Harita adds a bronze in the women's 200 meters. The medals are coming, the performances are coming, and importantly, the momentum is building. And speaking of powerful performances, the medal hopes are right up there in athletics as well, because we are watching live the women's long jump final right now, and India has two strong contenders in the field. Ansi Sojan dominating it right now, currently sitting at the top of the standings with the best jump of 6.49 meters. Her first attempt was 6.49, the second one invalid, the third again came at 6.46, and despite that, Ansi remains at the top. And other contender Shelly Singh is currently in fourth position with 6.34 meters. Her first attempt was 6.25. She improved to 6.34 on her second and has matched that distance again with her third attempt. So there is plenty to watch, plenty to cheer for, and plenty still to come.
1: एशियन गेम्स में लगातार उठा पटक का दौर जारी है। डेकाथलॉन की बात करेंगे, पुरुषों की स्पर्धा में जेवलिन थ्रो में भारत के तेजस्विन शंकर ने पांचवां स्थान हासिल कर लिया है। तेजस्विन ने अपने तीन प्रयासों में, जो पहला प्रयास था उनका 46.29, दूसरा प्रयास था

0: 53 3 जो सबसे बेस्ट उनका प्रयास था। इसके बाद हालांकि तीसरे प्रयास में उन्होंने 51.81 मीटर का थ्रो किया, लेकिन उनका जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो था वो 53.37 मीटर रहा है। जेवलिन थ्रो के बाद डेकेथलॉन में तेज अश्विन शंकर की चुनौती बताएं तो अंतिम इवेंट 1500 मीटर दौड़ जो वो अभी खेली जा रही है, वहां डेकेथलॉन में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर आकलन के सभी 10 स्पर्धाओं में जो हासिल किए अंकों के आधार पर किया जाता है, वहां फैसला होगा कौन पोडियम पर पहले स्थान पर रहता, कौन दूसरे, कौन तीसरे। हालांकि अभी तेजस्विन शंकर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
1: And while we continue to follow the result coming in from athletics, there is an update from the men's 200 meters final as well. Animesh Kudur finished fifth, clocking 20.80 seconds in the final and missing the podium. Now let's move on to another men's event happening live right now. That is the men's high jump final with Sarvesh Kushare and Jyoti Shankar representing India. Jyoti Shankar has cleared 2 meters and is currently sitting in sixth position, while Sarvesh remains in contention as the competition continues. Another medal opportunity is very much in focus as the athletic action continues.
0: एक और मेडल इवेंट की बात करते हैं जहां भारत को होप है, भारत को उम्मीद है यहां पर पदक जरूर आएगा, वो है हॉकी। और हॉकी में महिला हॉकी टीम जिस तरह से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है, उसी का एक आधार यहां भी दिखाई दे रहा है। सिंगापुर के खिलाफ भारतीय महिला टीम जिस तरह प्रदर्शन कर रही है, 5-0 की एक भारी भरकम लीड ले चुकी। तीसरा जो क्वार्टर है वो जारी है। आपको ये भी बता दें भारत ने जो 5 गोल स्कोर किए वो दूसरे क्वार्टर में गोल किए थे, दूसरे क्वार्टर में उन्होंने 5 गोल स्कोर किया। हालांकि तीसरा क्वार्टर जो है अभी जारी है, वहां पर कोई गोल नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह से मजबूती से भारतीय टीम प्रदर्शन कर रही है, लगातार गोल कर रही है, यकीनी तौर पर माना जा रहा है यह भी एक टीम साबित होगी जो पदक के यानी पोडियम पर पहले दूसरे स्थान पर दिखाई दे सकती है।
1: एंड विद दीज अपडेट्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर रिजल्ट्स, ब्रिंगिंग इन मोर एथलेटिक मैचेस एंड लाइव अपडेट्स टू यू आफ्टर एन आवर। एंड विद दिस, दिस इज विदुषी वत्स विद शाहिद आजमी, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: డమరకం చిత్ర నుంచి సూపర్ హిట్ సాంగ్ వింటూ ఉన్నారు. సో ఫ్రెండ్స్, మన రెయిన్బో క్లాక్ లో మరికొద్ది క్షణాల్లో 6:30 కావస్తుంది. మరి 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 బీయింగ్ హెల్డ్ ఇన్ జపాన్ కి సంబంధించి అప్డేట్స్ వింటారు, వెంటనే ఉండండి.
1: Welcome, and it's time to bring you all the latest from Asian Games. I am Vidushi Vats here with Mohammed Shahid Azmi, bringing you all the major developments from the last hour and a half. And what a last 90 minutes it has been. Twists, turns, changing positions, dramatic finishes, and now 2 more silver medals for India. Yes, after the 2 silver medals we already brought you from squash, India has added 2 more silver medals, both from athletics. And we begin with a sensational performance in the women's long jump final. Ansi Sojan has done it, silver medal for India. Ansi produced a stunning 6.53 meter jump with her final attempt to secure second place, and what a competition she had. She was the athlete to beat for much of the final, sitting right at the top of the standings and showing remarkable consistency and control. And then when it mattered the most, she delivered a massive 6.53 meters with a final attempt to bring home the silver for India. And that is India's 3rd silver medal of the day, following the silver medal performances from Abhay Singh and Anahat Singh in squash. But the silver medal celebrations don't stop there. Another silver for India, this time in the men's high jump. Sarvesh Koshari has done it. A brilliant performance from the Indian high jumper who dominated the competition for a major part of the final and spent much of the contest right at the top of the standings, eventually finishing second with a clearance of 2.25 meters. Silver for Sarvesh Koshari, silver for India.
2: जी बिल्कुल, कई पदक बिल्कुल पास आके चले गए, गोल्ड करीब आते आते चला गया, जैसे कहें कि होठों तक प्याला आके छलक गया. बिल्कुल, एनसी और सर्वेश यहां गोल्ड जीत सकते थे, मामूली अंतर से उनसे गोल्ड छलक गया. बात करेंगे एथलेटिक्स में जिस तरह कामयाबी मिल रही, 13 अब तक पदक एथलेटिक्स से भारत को मिल चुके हैं. ओवरऑल अगर देखा जाए इस एशियन गेम्स में, अगर आज के एक और पदक की बात कर लेते हैं, महिला 100 मीटर दौड़ की बात करें तो भारत की हरिता भद्रा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23.20 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता. वहीं भारत के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की है. तेजस्विन ने कुल 7,934 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहते हुए जापान के मारियामान ने वहीं पर 8,123 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि चीन के शिंगहुआ ने 8,012 अंकों के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया. आपको बता दें 2022 में रजत पदक जीतने वाले यह एशियाई खेलों में यहां बता दें तो डेकाथलॉन में उनका लगातार दूसरा पदक है. कहीं ना कहीं यहां पर तेजस्विन अपना जो पदक का रंग बदलने से चूक गए, लेकिन हाँ, लगातार दूसरे एशियन गेम्स में उन्होंने पदक जरूर जीता है.
1: Absolutely. Now another big medal moment for India in the women's 3000 meter steeplechase. Parul Chaudhary has done it, bronze for India. Parul finished third to secure a brilliant podium finish with Ankita finishing fourth. What a performance from Parul, holding her ground in a grueling final and bringing another athletics medal home for India.
2: बिल्कुल, पारुल ने एशियन गेम्स में जाने से पहले हमसे बातचीत में भी कहा था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूंगी, ऐसा ही कर उन्होंने दिखाया भी, अपना बेस्ट किया उन्होंने. लेकिन यहां पर बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं विदुषी, एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग ने भी कई कमाल किए हैं. रिंग में भारत के लिए शानदार खबर है, भारतीय मुक्केबाज आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. जैसा मैंने बताया 3 पदक पक्के कर लिए, अंकुश पंघाल, प्रवीण और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीत लिए, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. आज मुक्केबाजी के अंतिम मुकाबले का परिणाम बता देते हैं, पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सिथपेक के खिलाफ

0: अरे अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
1: पुतला बोल रहे?
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
1: मतलब?
0: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
1: परम तो सभी डाले हैं।
0: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है?
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: वाणी आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
2: नमस्कार, द आकाशवाणी पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट हमारी वो सीरीज है जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तित्वों से करवाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, हम सबके लिए रोल मॉडल भी हैं और उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट श्रीमती कुलजीत कौर जी, उनका करते हैं बहुत बहुत स्वागत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम
3: बहुत
2: में।
3: बहुत शुक्रिया तपस्या, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने अच्छे लफ्ज मेरे लिए बोलने के लिए।
2: नहीं नहीं मैम,
3: थैंक यू सो मच।
2: आप, मुझे मालूम है जब मेरी आपसे बातचीत शुरू हुई तो इतना कुछ आपके बारे में बात करने के लिए है, जो आपकी लाइफ जर्नी है, जो आपका सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर चाहे वो बतौर टीचर लेक्चरर हो और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट के रूप में, तो बहुत सी बातें आपसे करनी है। लेकिन शुरुआत अगर मैम हम इस तरह से करें कि फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मोटे तौर पे क्या कहेंगे सबसे पहले?
3: देखो, औरतों की जो हालत, पार्टीशन से अगर स्टार्ट करें और आज के दिन में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क है। इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है सोशल एटीट्यूड में औरतों की तरफ। जैसे हम देखते हैं कि देख के आदमी हैरान रह जाता है। हर एक सरकार ने जो है औरतों को एम्पावर करने के लिए बहुत काम किए हैं, बड़े रूल्स भी पास किए हैं, लेकिन अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जिसके कारण इनका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर बहुत है और समाज के ऊपर भी बहुत है।
2: जी, ये बहुत अच्छी बात आपने मैम बोली कि कॉमन मासेस में जब खास तौर से औरतों की हम बात करते हैं तो एक होता है कि जो हमारे गांव में रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ इस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम्स का आना वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, हमें याद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात न केवल कही थी मैम, ये भी कहा था कि कोई प्रधानमंत्री शायद ऐसा हुआ नहीं होगा जो यहां से टॉयलेट की बात करेगा,
3: बिल्कुल
2: शौच की बात करेगा, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट इशू था मैम, क्या कहेंगे आप?
3: नहीं नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप था जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश के लिए लिया, और वाकई उनकी बात से बिल्कुल ठीक थी कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी लीडर किसी कंट्री का ऐसे फोरम से खड़े होकर टॉयलेट्स की बात नहीं करेगा। पर उन्होंने ये सोचा कि जमीन पर एट द ग्रास रूट लेवल औरतों की ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है। मुझे भी याद है कि पंजाब में कई बार शाम के टाइम आप देखो तो औरतें जो थी वो पर्दा करके अपना जो है टॉयलेट्स के लिए गांव में, फसलों में, फार्म हाउसेस में वहां पर आया करती थी, और कई बार इतना बुरा लगता था कि उनको घूंघट निकालने पड़ते थे, और ट्रक्स वगैरह दूर से आते थे तो ट्रक्स की लाइट उनके ऊपर जाती थी, दे यूज टू फील सो एम्बेरस्ड, उनको बहुत बुरा लगता था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझा और इसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी, पूरे देश में ये अवेयरनेस क्रिएट करी कि लेडीज के लिए सेपरेट टॉयलेट होने जरूरी हैं। बनवाए भी उन्होंने, पर ये जो अवेयरनेस आ गई, लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरतों की इज्जत के लिए, औरतों की सेफ्टी के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी हैं। आप आज देखिए, हर गांव में देखिए, हर शहर में देखिए, जगह जगह औरतों के लिए सेपरेट टॉयलेट्स बने हैं, जिससे औरतों को, इसके ऊपर मूवी भी बनी है,
2: हाँ जी,
3: जिससे औरतों को बहुत कंफर्टेबल भी फील करता है और वो सोचती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट के बारे में, इज्जत के बारे में इतने ऊपर लेवल से, प्रधानमंत्री के लेवल से किसी ने उसके बारे में सोचा है। तो इसके लिए औरतें काफी शुक्रमंद भी हैं, थैंक्स भी करती हैं।
2: जी जी मैम, सोचा भी था, उसके लिए बाकायदा फंड्स एलोकेट किए गए और हर घर में जो नए घर बने उसमें भी ये सुनिश्चित किया गया कि सबके लिए अलग से टॉयलेट जरूरी है।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: और इट्स नॉट ओनली अबाउट मैम टॉयलेट एंड सैनिटेशन, उसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते थे महिलाओं के साथ में दिन ढलने के बाद में, उसमें भी बहुत रिलीफ मिला है और बहुत महिलाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत आशीर्वाद और दुआएं भी दी है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से किया है, क्योंकि ये औरतों के बारे में जैसे मैंने कहा कि इतने सालों से, 70 सालों से किसी ने नहीं सोचा, ये खाली उसकी हेल्थ की सेफ्टी नहीं थी, ये औरत की एम्पावरमेंट थी, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, डिग्निटी थी, वो सबके लिए बहुत जरूरी था कि और जो पर्दा चाहती है वो अपनी प्राइवेसी है, क्योंकि हर एक इंसान की प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करने से, उसके लिए स्पेशल फंडिंग करने और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि घरों में औरतों के लिए टॉयलेट्स होने बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस के साथ लोगों में बहुत बदलाव आया जिससे औरतों की डिग्निटी जो है उनको मिली, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, सोशली ऑल्सो लोगों को ये फीलिंग हुई कि औरत की इज्जत भी, प्राइवेसी भी है जिसकी हमें इज्जत करनी है। तो इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने औरतों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए। और उससे क्या होता था कि जब यंग गर्ल्स रात के टाइम, शाम के टाइम वो अपने आप को रिलीव करने के लिए जाया करती थी खेतों में, तो कई बार जो है वो फिजिकल असॉल्ट भी हो जाते थे, रेप केसेस भी हो जाया करते थे, अंधेरे में कुछ समझ नहीं आती थी। पर इस उस स्टेप से औरत की डिग्निटी तो हुई, प्राइवेसी भी हुई, औरत की सिक्योरिटी भी हुई इसके कारण।
2: जी,
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: मैम, मेंटल अगर आप पीस की बात करें तो कितना रिलैक्सेशन है कि अब आपको जंगल में नहीं जाना, जहाँ पे स्नेक्स निकल आते थे, बहुत सारे एनिमल्स आसपास होते थे खेतों में और नॉल। इसमें हम थोड़ा सा इसको और हम और आगे लेके चलें तो सैनिटरी पैड्स को लेके भी कभी भी स्कूल्स में बच्चियां जो है घर में अपने पेरेंट्स स्पेशली मदर के साथ भी ओपन अप नहीं हो पाती थी, बट जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स आई, स्कूल्स में अवेलेबल होने लगे सब चीजें, तो उनको उसकी यूटिलिटी क्या है, यूजेज क्या है, वो भी समझ में आया और उनकी अपनी हाइजीन को लेकर बहुत चेंजेस उसमें आए। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जब हम बात करते हैं और युवा भारत की बात करते हैं, उसमें 50% अगर हम देखें तो जो गर्ल चाइल्ड की बात होती है, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप उसमें अगर हम देखें तो।
3: तपस्या जी, आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि इसकी जो रिपरकशन, इसका इफेक्ट लड़कियों की जिंदगी पर बहुत पड़ता था। जैसे ही उनके पीरियड्स आने शुरू होते थे, महीने आने शुरू होते थे, तो लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया जाता था। ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं, क्योंकि अब लड़कियों के सेपरेट टॉयलेट हुए, अगर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको पीरियड्स आते हैं, तो उस टाइम भी वो प्राइवेटली जाके अपने आप की जो सफाई है बॉडी की उसको मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा, ये जो उनको सैनिटरी पैड्स मिलने शुरू हो गए, उससे उनको बड़ा कंफर्ट हो गया। पहले क्या था कि सैनिटरी पैड्स इतने ओपनली ना तो बाजार में मिलते थे, ना कोई इसकी बात करता था। ये चीज लड़कियां जब भी थोड़ी सी इस हालात में, सिचुएशन में आती थी कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो लड़कियों को ऐसे लगता था कि जैसे कोई वो पाप कर रही है, कोई बुरा कार्य करें, तो ये सारी कदमों से उनको बड़ा कंफर्ट फील हुआ है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट है। जब लड़कियां एडोलेसेंट होती हैं, बड़ी होती हैं, युवा होती हैं, तो पीरियड्स आने ये नेचुरल है, उसको संभालने के लिए उनको सैनिटरी पैड्स की जरूरत है। अभी बच्चियों को स्कूल में भी सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं और उसकी वेंडिंग मशीन्स भी आ रही हैं। मैं किसी मेंबर पार्लियामेंट उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे उन्होंने लड़कियों के लिए जगह जगह वेंडिंग मशीन्स, उन्होंने छोटे छोटे जो सड़कों पर ढाबे हैं वहां पर भी वेंडिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस करी हैं, ताकि लड़कियां आराम से जाके बाजार में अगर वो हिचकिचाती हैं सैनिटरी पैड्स के लिए या वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वेंडिंग मशीन से जाके वो सैनिटरी पैड्स ले सकती हैं। अब उसके ऊपर खुल के भी बात होती है। हम भी जब ऐसी मीटिंग्स में जाते हैं, लड़कियों के साथ बात करते हैं, एडोलेसेंट प्रोग्राम्स करते हैं, उसमें भी हम उनको खुल के फिर बताते हैं, लड़कियां इसके बारे में झिझकती नहीं है, सवाल भी पूछती हैं और कंफर्टेबल भी फील करती हैं। तो ये बड़े ही अच्छे स्टेप हैं औरत को एम्पावर करने के लिए और औरत की डिग्निटी के लिए। इससे औरतों की जो इज्जत है वो समाज में क्या उनकी अपनी नजरों में भी बढ़ती है। अब ये दोनों कनेक्टेड स्टेप हो गए, टॉयलेट भी हो गया, सैनिटरी पैड्स भी हो गए, प्राइवेसी हो गई, डिग्निटी भी हो गई। अब उनको ये हम समझाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जब उन्होंने मदर्स बननी है, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो। तो इससे लड़कियों की नॉलेज भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और इज्जत बढ़ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
2: और मैम, वो वोकल हो गए हैं सब लोग, तो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा भी, फिजिकल मेंटल हेल्थ के साथ साथ अगर हम मेन फोक की बात करें तो उनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन या थोड़ा सा एक ईजी चीजें हो रही है डिस्कस करने के लिए हासिल, ये बहुत अच्छी बात है।
3: क्योंकि ऐसे होता है ना, जो बात आप खुल के करोगे तो वो कॉमन कम्युनिकेशन में आ जाती है। जिस बात को आप कितना छिपाते हो उतनी बात के लिए आपको लगता है पता है ये गलत बात है, इसको नहीं बोलना। अब ओपनली बोलने लग गए हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में, सैनिटरी पैड्स के बारे में, तो ऐसे लगता है कि ये नेचुरल डेवलपमेंट बॉडी में है।
2: मैम स्कीम्स की बात चल निकली है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें अभी आपने बात की कि स्कूल्स में बच्चों को अवेलेबल हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जा रहे हैं। हमारे

0: आकाशवाणी से, दूरदर्शन से, बहुत जगहों से, फिल्म्स भी बन रही हैं, आपने खुद कहा। इसमें मैम खास तौर से बेटियों की पढ़ाई की जब बात आती है तो ये कड़ियां कहीं जुड़ती हैं जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हम बात करते हैं।
1: मैंने आपको ये बोला ना कि जब भी बच्चों को, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती थी तो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती थी। आप अगर अपना पुराना निकाल के देखिए जो आपका डाटा है तो आपको उससे पता चलेगा कि ज्यादा लड़कियां जो है वो 7वीं 6वीं क्लास तक पढ़ती थी। जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती थी माँ बाप उनको घर बिठा लेते थे। तो अब जो है उनको जब भी अवेयरनेस हो गई है, सोसाइटी उसमें ओपनली बात करती है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, फैसिलिटीज उनको मिल रही है उसके लिए, तो वो ओपनली जो है वो स्कूल में एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकती हैं और आगे अपनी पढ़ाई भी आगे। ये बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक अब सबको पता है, नेचुरल प्रोसेस है और उसके लिए स्कूल वाले भी हेल्प कर रहे हैं और उसकी सोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली निकल के आ गई है जगह जगह। जैसे मैंने कहा वेंडिंग मशीन्स भी लग गई हैं
0: जी। इसमें थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगी, बताएं कि ये जो माइंडसेट की प्रॉब्लम थी, ये तो वो एंगल तो हुआ, लेकिन इसमें अब लड़कियां पढ़ रही हैं, अच्छी एजुकेशन लेके सेल्फ डिपेंडेंट बन रही हैं, करियर बना रही हैं अच्छे से, तो पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सिर्फ बेटे हमारा सहारा नहीं, बेटियां भी हमारा सहारा हो सकती हैं। तो जो पहले बच्चियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता था या पैदा होने के साथ ही, उसमें भी जो परसेप्शन है, माइंडसेट है, आपको लगता है उसमें भी चेंज आया है?
1: बहुत ज्यादा चेंज आया है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अगर आज से 50 साल पहले की आप बात करें और आज की बात करें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हरियाणा में हमने एक विलेज को अडॉप्ट किया, वहां की औरतें जब भी पहली दफा हम लोग गए तो उन्होंने इतने लंबे लंबे घूंघट निकाले हुए थे, लेकिन हम लोगों ने जाकर उनके साथ जब मिंगली करी, उनको कॉन्फिडेंस दिया, तो एक साल के बाद जब भी हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई तो उन लेडीज ने स्टेज पे डांस किया।
0: क्या बात है।
1: सो इससे मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि औरतों में कितनी एम्पावरमेंट आ गई है। वो इसलिए आ गई है क्योंकि पॉलिटिकली गवर्नमेंट का भी उनको बहुत सहारा है, बड़ी सपोर्ट है, नई नई स्कीम्स बन रही हैं जिससे उनको पता चलता है कि हमारे लिए सरकार कितना काम कर रही है। वो औरतों को बहुत कॉन्फिडेंस देती है और उसके कारण लड़कियों की एजुकेशन फर्दर डेवलपमेंट भी बहुत हो रही है। अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग थी चेन्नई में, तो वहां पर गवर्नर मिस्टर रवि आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि वो IIT में गए वहां पर सेरेमनी के लिए, तो फ्रंट रो में सब लड़कियां बैठी हुई थी, देवर गोल्ड मेडलिस्ट। सो हमें इतनी खुशी हुई कि लड़कियां देखो कितना आगे बढ़ रही हैं। और पेरेंट्स का आगे जो होता था एकदम माइंड सेट के लड़की पैदा हुई तो दुखी हो गए, बहू को घर से निकाल दिया। अब ऐसा नहीं है, अब पेरेंट्स को ये प्राइड फील होता है कि मेरी लड़की कितनी लायक है, मेरी लड़की कितना अचीव कर रही है। इसलिए जो वो माइंड सेट था जो जेंट्स का, पेरेंट्स का, इन लॉज का, उसमें बहुत बड़ी चेंज आई है, जिसका जो मैं कहती हूं कि श्रेय सरकार को भी जाता है। एक तो ओपनली उन्होंने इसके बारे में बात करनी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये स्कीम स्टार्ट करी, लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट कर दिए, स्कॉलरशिप्स करे, फ्री यूनिफॉर्म्स करी, फ्री बुक्स करी, तो पेरेंट्स के ऊपर अब कोई भी वैसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। और लड़कियां जितनी पढ़ाई, देखो स्टैंड में कितने परसेंट इन्होंने सीट्स लड़कियों के लिए बढ़ा दी, तो लड़कियां कैसे आगे बढ़ रही हैं, पायलट्स बन रही हैं, अब तो आर्मी में भी लड़कियों की जो
0: वो
1: कर दी है इतने। अब रिसेंटली एक फ्लाइट चली जिसमें सारी लड़कियां ही पायलट्स थी और वो ड्यूटी पर थी, तो दैट शोज के कितनी चेंज आ चुकी है, लड़कियों में कितनी एम्पावरमेंट हो गई है, एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट कि हम आदमियों से किसी तरह से भी कम नहीं है। तो चेंज तो बहुत है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि जो हमने जो देखा अपने टाइम और अब जो चेंज है एजुकेशन में भी, अब लड़कियों को और कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वी आर अनवांटेड, अब ऐसा नहीं है। अब तो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हमारी ओल्ड एज में हमारी लड़कियां जो है वो हमें लुक आफ्टर कर सकती हैं। अब हमारा एक केस था, उससे मैं किसी से बात कर रही थी, शी इज द ओनली डॉटर। उसने कहा कि मेरी शादी की ये कंडीशन थी कि आई विल लुक आफ्टर माई हस्बैंड्स पेरेंट्स एंड ही शुड लुक आफ्टर माई पेरेंट्स। तो कहने लगी एक घर में ग्राउंड फ्लोर पे मेरे इन-लॉज हैं, फर्स्ट फ्लोर में मेरे पेरेंट्स हैं, और इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, इतनी अच्छी एडजस्टमेंट है, पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करा और इन-लॉज ने भी करा कि डॉटर का भी फर्ज है अपने पेरेंट्स की केयर करना। सो इसलिए सोशल चेंज तो बहुत अच्छे से आ रही है जो कि लड़कियों के फेवर में, सोसाइटी के फेवर में आ रही है, और हम इसको वेलकम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इस बात।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: जो
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं

0: तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: जी आप बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की मैम, तो अवेयरनेस भी आ रही है, लड़कियां प्रूव भी कर रही हैं और चीजें सब स्टैब्लिश भी हो रही हैं सोसाइटी में। इसमें अगर हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम देखें तो

0: करनी पड़ती है और मुश्किल होती थी, क्या कहेंगे मैम इसमें
1: नहीं,
0: आप?
1: जो भी स्कीम्स, अब आपने टॉयलेट से स्टार्ट करा,
0: जी
1: आपने उसके बाद ने ये फ्री पैड्स की बात करी,
0: जी
1: सारी चीज जो है औरत की अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जाती हैं।
0: जी
1: जब भी वो कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, वो जो सारा धुआं उनके अंदर जाता था, तो मोस्ट ऑफ द वुमेन वो सफर करती थी अस्थमा, अस्थमा की उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस की प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि लकड़ी जलाने का वो सारा धुआं उनके अंदर जाता था जो उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट करता था। अब ये जो सारी स्कीम्स, अगर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो औरत की जहां डिग्निटी भी हुई, औरत जो है वहां इंडिपेंडेंट भी हुई। अब देखो, उज्ज्वला में गैस आ गई, तो औरत किचन में से कितना फ्री टाइम उसको मिलता है,
0: जी
1: और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, हर एक स्टेप का इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर कितना हो रहा है। अगर आपकी लड़कियां हेल्दी होंगी, अगर आपकी वुमेन हेल्दी होंगी, फ्यूचर जनरेशन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी।
0: जी
1: तो ये बहुत ही ज्यादा गहरी सोच का रिजल्ट है कि औरतों को इतना एम्पावर कर दिया गया, औरतों की पोजिशन इतनी ज्यादा इम्प्रूव कर दी गई, तभी तो लड़कियां आज इतने कॉन्फिडेंस से चलती हैं, कॉन्फिडेंस से पढ़ती हैं, काम करती हैं। एवरीवेयर यू कैन सी द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो
0: जी
1: हमें देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फ्यूचर जो है वो कितने सेफ हैंड्स में है। उसके
0: जी
1: बावजूद भी सरकार ने इतनी स्कीम्स और भी चलाई हैं औरतों को फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए भी, और आप अगर उसके बारे में भी कुछ जानना चाहें तो मैं उसके बारे में भी आपको
0: बिल्कुल मैम,
1: बता
0: आपने
1: सकती हूँ।
0: फाइनेंशियली एम्पावर होने की बात की है, तो एक मैम माँ होना हमेशा से हमारे यहाँ कहा जाता है कि सौभाग्य की बात है, कि वो ईश्वर का दूसरा रूप हो जाती है माँ जब बन जाती है तो। लेकिन उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें ये होती थी कि मेटर्निटी लीव लेंगी और वो उसमें फिर घर बैठना होगा, फिर वो एक कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है कि आप घर में हैं और आपको कुछ और फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। लेकिन ये जो पेड मेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट आया मैम, इसने बहुत हेल्प किया।
1: बहुत ज्यादा, मैंने आपको ये कहा कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं वुमेन को पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अपने मद्देनजर रख के सरकार बना रही है, औरतों को बहुत फायदा हो रहा है उससे। अभी आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी, अब जो नई चीज जो मेरे को बड़ी इम्पैक्ट करी, दैट इज द ड्रोन दीदी।
0: जी
1: आप इमेजिन कर सकते थे कि औरतें जो है वो ड्रोन्स बनाएंगी, ड्रोन्स चलाएंगी
0: जी
1: अपनी एग्रीकल्चर, अपने फार्म हाउसेस की और सब चीजों की, वो वहां पर जो है वो उसके स्क्रूटनाइज कर सकती हैं, सुपरवाइज कर सकती हैं ड्रोन के जरिए। ये इतनी एम्पावरमेंट है कि आपने जो आम, जैसे आप गांव की औरतों की बात कर रही हैं, उनको आपने आकाश में उड़ा दिया
0: आकाश में
1: है।
0: उड़ा दिया।
1: तो ड्रोन्स के साथ जो ड्रोन दीदी स्कीम है, सब स्कीम्स ही बहुत अच्छी हैं, ये स्कीम जो है ये तो बड़ी रेवोल्यूशनरी स्कीम है। बाकी सबसे बड़ी जो चेंज आई है, मैं ये सोचती हूँ, स्कीम्स तो पहले भी कुछ कुछ हुआ करती थी पर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, अब ये हो गया है कि सरकार ने उसके स्टेप्स बना लिए हैं। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट उनको देते हैं तो खाली पैसा ही नहीं देते, उसके बाद सरकार सोचती है कि अगर हमने फाइनेंशियल हेल्प करी है तो स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। जनधन जो आपकी वो स्कीम है उसमें जीरो से भी आप अकाउंट खोल सकते हो डायरेक्टली, देर इज नो मिडल मैन। आपका पैसा जो गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, जो आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो, वो डायरेक्ट आपका पैसा बैंक में आता है और देर इज नो मिडल मैन, आप सीधा जाके बैंक से निकलवाइए। एक तो औरत जब भी बैंक में जाके विड्रॉ करती है, उसके हाथ में जब भी पैसा आता है, आई नो कि वो क्या फीलिंग होती है। जब मैं जॉब करती थी तभी तो चेक्स वगैरह नहीं, कैश ही मिला करता था, जब वो आके कैशियर हाथ में कैश पकड़ाते थे तो आपको इतनी एलिवेशन की फीलिंग होती है, आप इतना एम्पावर फील करते हो कि ये पैसा मेरा है, मेरा हक है इसके ऊपर, मुझे किसी ने ये दान नहीं दिया। पहले ये होता था कि उस टाइम में औरत की स्लेवली इसलिए भी थी कि हर चीज के लिए वो आदमी पे डिपेंडेंट थी,
0: डिपेंडेंट थी।
1: उसको 10 रुपए भी चाहिए तो आदमी का आगे हाथ फैलाती थी, कई बार वो हिचकिचा जाती थी, हेजिटेंट हो जाती थी कि मैं हर वक्त आदमी से क्यों मांगू। अभी ये जो बैंक का हो गया है, उसका इंडिपेंडेंट, उसके अकाउंट हो गए हैं, उसके नाम पे पैसे जमा है, उसको पैसा डायरेक्टली मिल रहा है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकती है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए स्किल ट्रेनिंग का रखा है। स्किल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि आपको पैसा दे दिया, ट्रेनिंग दे दी, फिर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, सारी डिजिटाइजेशन हो रही है कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ कहाँ आपको हेल्प की जरूरत है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। और ये जो मॉनिटरिंग हो रही है उससे जो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है ना, अगर हमने आपको पैसा दिया, आप लोगों को नहीं दे रहे, लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो आपका उसी में आ जाएगा जब भी आपकी वहां पर रिपोर्ट डिजिटाइजेशन में आएगी, क्योंकि मॉनिटरिंग हो रही है सब, तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कहाँ कहाँ फेलियर है.
0: जी
1: सो ये स्कीम्स की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डिजिटाइजेशन है, मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है. तो बहुत थॉटफुली, बड़ी इंटेलिजेंटली
0: जी
1: ये सारी स्कीम्स बनाई हैं.

0: हैं जो कि औरतों की पोजीशन को बहुत ही ऊपर कर रही हैं, उनकी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर रही हैं, लड़कियों को एजुकेटेड कर रही हैं, लड़कियों को एम्पावर कर रही हैं, और ये सोसाइटी में अवेयरनेस आती है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं
1: नहीं है,
0: हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामा। पूरा जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ज्यादा अकाउंटेबल हो रहा है। आपने जो अभी ड्रोन दीदी की बात की मैम, उसमें हम इमेजिन करके बहुत अच्छा लगता है कि गांव की एक लड़की या महिला वो ये फील करती है कि अब मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ गई हूँ,
0: बिल्कुल
1: मैं
0: ठीक
1: मॉडर्न
0: है।
1: टाइम्स में हूँ। तो पहले तो बस चौका चूल्हा करो यही बोल के उनको चुप करा दिया जाता था,
0: ये
1: और
0: बड़ी हद है, थोड़े बहुत है, मतलब टीचिंग ट्रेन टीचर्स ट्रेनिंग करा, अब
1: जी
0: एवेन्यू सारे ओपन हो गए
1: हाँ
0: हैं। जैसे
1: जी
0: मैंने कहा पायलट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट सब लेडीज पायलट की फ्लाइट हुई, आर्मी में देखो जा रही है, वहां पर उनकी प्रमोशंस का वही हाल है जो मतलब जो बाकी जेंट्स का है। नहीं तो पहले
1: जी
0: था कि औरतें एक पोजीशन के बाद जो उनकी प्रमोशंस नहीं हो सकती, खाली डॉक्टर्स ही थी, पर अब ऐसी वो सारी जो
1: नहीं है
0: चीजें बंदिशें
1: जी
0: खत्म कर दी। ऐसे लगता है मेरे को, कई बार ऐसा लगता है कि औरत आजाद होकर पंछी की तरह उड़ना शुरू हो गई
1: जी
0: आकाश में, इतनी ज्यादा फ्रीडम आ रही है। और चारों तरफ आप देखते हो औरतें, इवन जब भी 26 जनवरी को इस पर देखा ना कि ओनली विमेन की जो
1: हाँ
0: ब्रिगेड जा रही थी,
1: जी
0: कितनी खुशी होती है कि इस मुल्क में औरतें कितनी एम्पावर हैं,
1: जी
0: कितनी कॉन्फिडेंट हो रही हैं, और कितनी खुशी फैल। औरत अगर पढ़ी लिखी है, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट द होल फैमिली,
1: फैमिली
0: यू एम्पावर अ वुमेन, यू एम्पावर द होल फैमिली। सो ये मुद्दा बहुत अच्छा है। पहले हम खाली आदमी पर कंसंट्रेट करते थे, लड़कों की एजुकेशन, लड़कों की एम्पावरमेंट, लड़कों का करियर, अब वो चीज शिफ्ट होकर लड़कियों पर भी आ गई है, जिससे समाज का, फैमिली का, क्या पूरे देश का सुधार हम देख भी रहे हैं
1: जी
0: कि लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंस से मूव करती हैं, इंडिपेंडेंटली मूव। कल मैं पठानकोट से आ रही थी तो मैंने एयरपोर्ट पे लड़कियों को देखा, 6 लड़कियां वहां खड़ी थी, तो देखने में देवर लुकिंग सो गुड एंड सो कॉन्फिडेंट। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आप स्पोर्ट्स के लिए आए थे? दे सेड नहीं मैडम, हम BSF हमने ज्वाइन करा, हम ट्रेनिंग से। आई फेल्ट सो गुड। मैंने उनको बिल्कुल आशीर्वाद दी, मैंने कहा मेरे को इतना अच्छा लगा है कि आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जा रही हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपने मुल्क की सेफ्टी के लिए आप ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई
1: ट्रेनिंग
0: हैं।
1: जा
0: सो
1: रहे हैं
0: दीज आर द स्टेप्स, वो हमको भी इतनी फीलिंग ऑफ एलिवेशन देते हैं, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है जहां औरतें पर्दे से बाहर नहीं निकल सकती थी, लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी, लड़की पैदा होती थी तो घर में मातम छा जाता था कि लड़की आ गई और दहेज के कारण। अभी डॉरी के लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं इसके खिलाफ। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे धीरे, क्या मैं तो कहती हूँ काफी कुछ हो गया है और आगे भी होता जाएगा। एक बार औरत ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो पूरा देश ही आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, बहुत अच्छा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, आप एक एक गाड़ी के पीछे देखो, एक एक ट्रक के पीछे, सो दिस मीन्स दैट मैसेज इज गोइंग टू द विलेजेस, मतलब नीचे तक वो जो है मैसेज जा रहा है कि बेटी के खिलाफ नहीं बोलना है, बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है और बेटी को एम्पावर करना है। तो दिस इज वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा हो
1: आपने
0: रहा है।
1: अभी हरियाणा का जिक्र किया, तो मैम बहुत से स्टेट्स में हमने देखा कि जो पैट्रियार्कल सेटअप है, जो एक सिस्टम हमेशा से रहा है, उसमें अभी भी कुछ फादर्स हैं या घर के जो पुरुष हैं उनको थोड़ा सा कहीं एक डाउट रहता है या वो एक तरह का स्टिग्मा अभी भी है। तो वहां पे हमने देखा है कि जो माएं हैं बहनें वो आगे आती हैं उनको डिफेंड करने के लिए कि नहीं हम पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे और करियर में इनको अपनी तरह से ऑप्ट करने देंगे, फ्रीडम देंगे। तो ये भी एक माइंडसेट में चेंज जो हम देख रहे हैं।
0: बहुत
1: जी
0: बहुत चेंज आ
1: आपने
0: रही
1: जनधन की बात की तो बड़ी क्यूट सी
0: है।
1: चीजें जानने सुनने को मैं मिलती रही कि वो महिलाएं जो घर में चावल के डिब्बे में पहले या छुपा छुपा के पैसे रखती थी,
0: बिल्कुल
1: अब दे
0: बिल्कुल,
1: हैव देयर ओन अकाउंट्स और वहां जाके अपनी तरह से एक्सेस कर सकती हैं। और वो फिगर्स देख के जो मैम एक फील आता है उससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि और सेविंग करनी है।
0: बिल्कुल नहीं,
1: तो
0: दूसरा मनी को हैंडल करना,
1: हाँ जी
0: दैट इटसेल्फ गिव्स यू सो मच ऑफ पावर, नो कि मैं पैसे को हैंडल कर सकती हूँ, ये पैसा मेरा है।
1: जी
0: ये साइकोलॉजी है ना, ये शायद लोगों के लिए समझनी मुश्किल होगी, पर हम लेडीज को ये पता है कि
1: यस
0: इसका क्या इम्पैक्ट होता है। औरतें कितने अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करती हैं, एम्पावर्ड फील करती हैं, क्योंकि उसके हाथ में पैसा है और उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अल्टीमेटली वही जब मैंने जैसा से स्टार्ट करा था, इट अगेन टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ वुमेन।
1: डिग्निटी
0: औरत को आपने इतनी इज्जत दे दी है कि वो हाथ नहीं फैला रही है, वो
1: जी
0: खुद कमा रही है, वो छोटे छोटे जो अपने काम भी करती है उससे भी, और अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती है, जैसे आपने पहले भी कहा मैटर्निटी लीव इंक्लूड कर दी इतनी ज्यादा, उसके बाद पटर्निटी भी कर दी, तो इसलिए औरतों को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, फैमिली में भी लाइफ में वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सेटल हो सकती हैं।
1: जी
0: पहले वो अच्छे से एजुकेशन लेंगी, एजुकेशन लेने में भी उनको कोई भी फिजिकल जो रुकावट है वो नहीं आती, क्योंकि

0: सब कंफर्ट मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, पेरेंट्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, उसके बाद पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, उसके बाद जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं और जिंदगी के सारे एवेन्यू ओपन हैं उनके लिए। अभी आप देखो पेपर में तकरीबन रोज ये खबर आएगी कि एक मजदूर है, उसकी लड़की ने मेडिसिन ज्वाइन करी, उसकी लड़की ने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। अभी कल मैं पढ़ रही थी कि एक वो डेली लेबरर थे, उनकी बेटी जो है स्पोर्ट्स में कहां आगे बढ़ गई है। सो ये बड़ी खुशी की बात है, इसमें पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज्यादा है। अब लड़की को ब्लेसिंग समझा जाता है, ये बेटी मेरी केयर करेगी। आगे ये होता था कि पेरेंट्स, इसके लड़का चाहिए कि लड़के, पेरेंट्स की डेथ होगी तो उनको लास्ट राइट्स कौन करेगा। अब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी तीन बेटियां हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसकी बेटी उन्हें लास्ट राइट्स करे, कोई दिमाग में आया ही नहीं कि बेटा नहीं है कौन करेगा, बिल्कुल नहीं। सो ये जो सोशली माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात।
1: अब बहुत देर से मैम बहुत हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, तो अब ये पैसे की बात चली है तो लखपति दीदी सुनने में बड़ा कैची लगता है अपने आप में, तो इसका अभी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और भारत सरकार को जाता है, वर्तमान सरकार को। तो लखपति दीदी कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या
0: हाँ
1: कहेंगे?
0: हाँ लखपति दीदी डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट की बात है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के दिमाग में दो बातें हैं कि औरत को डिग्निटी दो और उसको फ्रीडम दो और उसको कॉन्फिडेंस दो और उसको एम्पावर करो। ये जो लखपति दीदी, इसका भी यही है, क्योंकि ये काफी पुराना से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो चलते आ रहे हैं, औरतों के ग्रुप बन जाते हैं, वो पैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करती हैं। अब इन्होंने बजाय कि औरतें अपनी किट्टी से 10 रुपए दें, 20 रुपए दें, तो इन्होंने ये स्कीम बनाई है कि औरतों को वो गवर्नमेंट जो है 10,000 तक देगी, उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो नए नए अपने बिजनेस चलाएंगी, नई नई चीजें बनाएंगी, क्राफ्ट की बनाएंगी। जैसे हमारी औरतें हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कैपेबल है, उनमें आर्ट बहुत है। अब देखो ये जो पाम ट्रीज होते हैं, उनके लीव से वो इतनी अच्छी टेबल मैट्स बनाती हैं, कोस्टर्स बनाती हैं, तो लेकिन पैसा कहाँ से आए, कहाँ से कलेक्ट करें, कैसे करें? तो ये जो पैसा सारा आएगा, जैसे मैंने आपको विलेज की बात करी, उस औरत ने मुझे बताया, कल मैं उसको मिली थी, वो कहती है कि मैडम हमारे गांव में बोली लगी जमीन के लिए, हम लोगों ने लखपति दीदी से जमीन खरीद के उसको जो है अब उसके ऊपर खेती करेंगे और वो जो खेती का पैसा आएगा वो हम सब बांटेंगे और उसके साथ देखो कितने एम्पावरमेंट होएगी। तो ये जो इनिशियली औरतों को ये प्रॉब्लम थी कि पैसा नहीं है और मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपना क्राफ्ट कैसे स्टार्ट करूं, वो बंधन, वो रुकावट, वो चीज अब खत्म हो गई है। जब दिवाली आ रही है उसके लिए वो दिए बनाएंगी, कैंडल्स बनाएंगी और देखना लाखों में उसकी सेल हो गई। लखपति दीदी का बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होने वाला है लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन।
1: दैट्स रियली नाइस मैम। हम मैम देखते हैं कि सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस को केटर करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्पेसिफिक स्कीम्स हैं। ट्रिपल तलाक एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा रहा हमेशा ही, जिसपे बात करने से भी लोग बचते थे, मतलब एक तरह से कि उसको टच नहीं करना है, इट वॉज अ काइंड ऑफ टबू एंड दिस थिंग। अभी हमने देखा कि उस पर तो बाकायदा ना सिर्फ बात हुई बल्कि सोल्यूशन के साथ हमारी गवर्नमेंट आई है।
0: हाँ, उन्होंने बड़ा स्ट्रांग स्टेप लिया इसके बारे में।
1: जी,
0: इसके बारे में हम लोग भी बड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि जो वाइफ है उसको कभी भी ये श्योरिटी नहीं होती कि कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो वाइफ की जो ना तो एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है, ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ना फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है,
1: और अपने राइट्स के बारे में मालूम भी नहीं है,
0: मालूम भी नहीं, और वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। गुस्से में आके कई बार मियां बीवी के बीच में आपस में ऊंच नीच होती है, पर वो गुस्से में अगर आके वो बोल देता है कि तलाक तलाक तलाक, तो आपका रिलेशन टूट जाता है। और उसके बावजूद जो लड़की के ऊपर इम्पैक्ट होता है, जो उसको इनसिक्योरिटी है, बच्चों का क्या, बच्चे कहां पर जाएंगे, वो माँ के साथ जाएंगे, बाप के साथ? सो यू आर क्रिएटिंग ए वेरी इनसिक्योर सोसाइटी ऑल्सो। तो उसको
1: मैम आप इजाजत दें, इसमें मैं एक थोड़ा सा एंगल जोड़ने की कोशिश करूं कि अब तक समस्या ये थी कि वो अगर उसको परेशानी है भी इस चीज से तो वो किससे बात करे, अपने मदर से बात करे, सिस्टर से बात करे, हस्बैंड से बात करे, इन लॉ से बात करे, उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। अभी हम देख रहे हैं कि जब सरकार अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है, आपको मौका देती है बोलने का, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं और सोल्यूशन के साथ आते हैं, आई थिंक ये अगर हम भारत की बात करते हैं आजादी के बाद से अब तक देखें तो कभी किसी ने छेड़ने का भी प्रयास नहीं किया इस मुद्दे को, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास
0: नहीं, ये
1: सोल्यूशन है।
0: सरकार का एक बहुत बोल्ड स्टेप था, उन्होंने ये कानून पास करके दिया कि ट्रिपल तलाक जो है ये ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें भी औरत का वही स्टेप

0: वही अल्टीमेटली उसकी सिक्योरिटी, उसकी डिग्निटी, उसका कंफर्ट लाइफ में उसको बेचारी को हो गया, और आदमियों को भी थोड़ा सा ये अलर्ट हो गए कि अगर हमने कोई गलत काम किया या अपने आप को इतना एम्पावर, अपने आप पावरफुल महसूस करा और औरत को हमने ऐसे हैरेस करने की कोशिश करी, तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर बाय द साइड ऑफ द वुमेन, लॉ जो है औरतों की तरफ में ही है।
1: जी, आप लॉ की बात कर रहे हैं मैम, तो इसमें एक बात मन में और आती है, इन जनरल अगर हम देखते हैं तो उसमें नारी अदालत जो है, आई थिंक ये भी एक बड़ा स्टेप है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: नारी अदालत तो इतना बड़ा स्टेप है क्योंकि औरत जो है ना नॉर्मली वो हेजिटेट करती है। एक तो कोर्ट में जाना एक्सपेंसिव है बहुत ज्यादा, दूसरा औरत जाके अपने जो उसकी प्रॉब्लम है वो ओपनली कई बार एक्सप्रेस नहीं कर
1: नहीं कर
0: सकती,
1: सकते।
0: इसलिए ना। दूसरा ये है कि नारी अदालत में तो खाली नारी के केसेस हैं, तो जैसे हम देखते हैं ना कि कोर्ट में इतने इतने केसेस इतने सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये तो लिमिटेड केस होते हैं, इसका जो सोल्यूशन भी जल्दी निकलता है, और नारी जो है वहां जाके अपने आप को कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वहां पर जजेस भी लेडीज ही होती हैं, सो इसलिए वुमेन जो है दे आर एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ ओपनली कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप जो नारी अदालत वाला भी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: वन स्टॉप सेंटर जी,
0: वो तो बहुत ही खूबसूरत चीज है,
1: जी
0: बहुत ही अच्छी चीज है, मैं कह रही हूँ जिसके दिमाग से भी निकली बहुत अच्छे से निकली है। मेरे को याद है वो अरुण जेटली वो इसके बहुत ही फेवर में थे, एक बार मुझे याद है हम उनको मिलने के लिए गए थे, तो उनका आइडिया था वन स्टॉप सेंटर का, तो उनके लिए मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था आप थोड़े टाइम में देखना पूरे देश में कितने वन स्टॉप सेंटर हो जाएंगे। उसके साथ फिर औरतों को इतनी कन्वीनियंस हो गई, अगर किसी औरत के साथ कोई मिसहैप होता था, कोई असॉल्ट होता था, रेप होता था, वो शिकायत करने जाती थी, उसको पहले पुलिस थाने में जाना पड़ता था, फिर चेकअप के लिए हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, फिर उसके बाद केस के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, अब एक ही छत के नीचे जब वो जाके अपनी कंप्लेंट किसी एनजीओ के साथ या कहाँ करती है, वन स्टॉप सेंटर में करती है, वहीं पर ही पुलिस का भी उसका केस एफआईआर लॉन्च करती है, वहीं पर ही उसको मेडिकल हेल्प भी मिल जाती है, तो वो जगह जगह उसको भटकना नहीं पड़ता। तो ये औरत के लिए उस हालत में जबकि वो बिल्कुल ही परेशानी की हालत में होती है, उस टाइम उसको ये सोल्यूशन देने, ये बहुत ही दूर तक दूरंदेशी की बात है कि वन स्टॉप सेंटर, मैं तो इसके फेवर में बहुत ज्यादा हूँ वन स्टॉप सेंटर। और उसके बाद जो इनके काम होते हैं वन स्टॉप सेंटर में, रोज दिन ये डाटा जो है वो भेजा जाता है हेड ऑफिस में, कितने केसेस आए, कितने केसेस जो है अपने डील करे, कितने आपके सक्सेसफुल हुए, और जो वन स्टॉप सेंटर उनकी अकाउंटेबिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस डेटा के कारण अकाउंटेबिलिटी, नहीं तो आगे क्या होता था, जैसे मैंने कहा कानून पहले भी थे पर कानून बना एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दैट। अब ये जो अकाउंटेबिलिटी होगी ना आपकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी उसका, क्योंकि डेटा जो है हर दिन सुबह शाम चलता है, तो उसके कारण आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी बहुत, आप क्या कर रहे हो औरतों के लिए, कितने केसेस कर रहे हो, उसको कैसे हैंडल कर रहे हो। ये नहीं कि औरत आई वन स्टॉप सेंटर में या आई उसमें डिस्ट्रिक्ट होम में जिसमें शक्ति सदन हम अब नाम देते हैं, आई तो आपने बॉर्डर ही नहीं करा, नो आपको जवाब देना पड़ता है हर दिन कि कितने केसेस आए, कितने आपने सॉल्व करे करे। मेरे को ये चीज इस गवर्नमेंट की बहुत अच्छी लगती है जो अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस है, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जो डाटा है वो तैयार होता है और वो जो ब्यूरोक्रेसी में हायर लेवल तक वो सर्कुलेट होता है, इसलिए इम्पैक्ट तभी कानून का होता है जब भी कानून की जो अकाउंटेबिलिटी हो। अगर आपने कानून बना दिया उसको भूल गए, किताबों में आपने लिख दिया हमने ये कानून बनाया लेकिन कानून की आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस कानून का कोई फायदा नहीं है। तो इस सरकार की सबसे सराहनीय, सबसे ज्यादा तारीफ वाली यह चीज है कि इन्होंने हर चीज का डाटा तैयार, आप गूगल में जाइए, ऑन करिए कंप्यूटर, आपको हर चीज का डाटा मिल जाएगा कि कितने केसेस वन स्टॉप सेंटर में हुए, कितने केसेस जुडिशरी में गए, कितने केसेस नारी अदालत में गए, एक क्लिक करने से आपको सारे परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। सो दैट इज द बेस्ट थिंग विच दिस गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड।
1: जी हम डिजिटल भारत की बात बहुत आती है और अभी आपने भी जिक्र किया डिजिटाइजेशन को लेके, हमें लगता है यूपीआई को लेके भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं कि इसका जो अभी यूज हो रहा है और उसमें महिलाओं को जो पहले कैश कैरी करना, छुपाना और ये सब चीजें समस्याएं आती थी वो भी नहीं है कि वो फोन कैरी करती है और कहीं भी जाके पेमेंट कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नोटिस में नहीं आ पाती लेकिन बेनिफिट इनका इतना ज्यादा है, इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि वो सबके लिए बहुत फायदे की बात है, स्पेशली वुमेन फोक की अगर हम बात करें। शी बॉक्स पोर्टल जो है उसके बारे में प्लीज अगर आप बताएं।
0: शी बॉक्स पोर्टल तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जहां हम औरत की सेफ्टी का घर में बात कर रहे हैं, स्कूल में बात कर रहे हैं, वहां पर वर्क प्लेस में भी इसकी बात करनी बहुत जरूरी है कि औरत जो है जब वर्क प्लेस में जाती है तो वहां पर उसकी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ, सेफ्टी के साथ एफिशिएंटली अपनी परफॉर्मेंस दे सके। तो उसके लिए हमारा 1997 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, जेएस वर्मा गाइडलाइंस, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक 2013 में पॉश एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। पर लड़कियों का क्या होता है, कई बार उनको समझ नहीं आती वेयर टू गो, हाउ टू मेक देयर कंप्लेन अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही, क्योंकि इफ ए वुमन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल एट वर्क प्लेस तो उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होता है, उसकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है। तो शी पोर्टल जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस करी थी, क्योंकि चाहे ये कंपल्सरी है, इफ यू डोंट हैव दिस आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो आपको 50,000 का फाइन होता है। तो लेकिन कई जगह ऐसे फिर भी कई छोटी छोटी कंपनीज या कई छोटी छोटी ऐसी हैं जहां पर उन्होंने ये आईसीसी नहीं इंट्रोड्यूस करी थी। हालांकि कानून है कि 10 से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉय हैं तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी बहुत जरूरी है। तो कई जगह अभी भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो अगर कोई लड़की हैरेस फील करती है और उसकी कमेटी नहीं है तो वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री में वहां पर अपनी कंप्लेंट को दायर करवा सकती है। इस पोर्टल का ये फायदा है, वो ऐप है, आप ऐप को डाउनलोड करो और हर एक जो वर्किंग प्लेस है उनके लिए कंपल्सरी है कि शी पोर्टल को आपने डाउनलोड करना ही है। तो लड़की डायरेक्टली करती है, जैसे वो डायरेक्टली करती है इमीडिएटली मिनिस्ट्री उस प्लेस ऑफ वर्क को कॉन्टेक्ट करती है कि आपके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्यों नहीं है, और वो मॉनिटर करती है उस लड़की की फिर शिकायत को हैंडल करने के लिए कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, वो जो प्रोसेस अभी कहां तक पहुंचा है। तो उससे एक तो वो जो कंपनी है जहां पर वो लड़की काम कर रही है उनके ऊपर मिनिस्ट्री का कंट्रोल हो जाता है, दूसरा वो जो लड़की है उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट हैज ट्राई टू क्रिएट सेफ प्लेस फॉर द वर्किंग वुमेन ऑल्सो एट द वर्क प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटेलिजेंट ये स्टेप है जो शी बॉक्स वाला है।
1: दैट्स वेरी नाइस मैम, वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक मुद्दा जिसपे बहुत बहुत बात बहुत वर्षों से होते आ रही है, कहां पहुंच रहे हैं ये देखना अभी बाकी है, दैट इज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल।
0: अब वुमेन के रिजर्वेशन बिल का तपस्या जी, मैंने इसकी डेवलपमेंट देखी है और आप सोशल चेंज के लिए बोलते हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि माइंडसेट लोगों के कैसे चेंज हुए। आज के दिन में देखो इस मुद्दे को यूनैनिमसली एक्सेप्ट कर दिया गया, ये कानून पास हो गया 33%। उसमें क्या है कि औरत को एम्पावर करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि शी शुड बी पॉलिटिकली एम्पावर्ड। एक बार औरत पॉलिटिकली एम्पावर हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। तो 33% के साथ क्या होगा, जब आपने वो सीट वुमेन के लिए करी है रिजर्व और 33% वुमेन जब उसमें बैठेंगी पार्लियामेंट में तो वो अपने आप में भी एक फोर्स कहलाएंगी। वो माइंडसेट चेंज होगा कि औरतें भी उतनी ही कैपेबल हैं बल्कि ज्यादा हैं कि जितने हम कैपेबल हैं। औरत तो मल्टीटास्किंग करती है, घर भी देखती है, ऑफिस भी देखती है, समाज भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। उसके अंदर तो मेरे को लगता है गॉड ने बिल्कुल फ्री टाइम में बैठ के उसको बनाया है, इंटेलिजेंस भी दी है, इमोशंस भी दी है, फिजिकल पावर भी दी है, मेंटल पावर भी दी है। और कई बार मैं सोचती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू होती है कि परमात्मा ने भी यही सोचा कि औरत के अंदर ही पावर है कि शी कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड। क्योंकि चाइल्ड को प्रोड्यूस करना इज नॉट ए स्मॉल थिंग. आपको 9 मंथ्स उसको कैरी करना है बॉडी में, फिर आपका जो प्रोसेस है उसको प्रोड्यूस करने का, उसके ब्रिंगिंग अप करने. पर मैं तो बहुत मानती हूँ, इसलिए औरत जो है आई डोंट वांट टू कंपेयर देम, पर मैं ये कहती हूँ कि औरत बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हर हिसाब से. वो घर घर में कोई, मैं देखती हूँ कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ आती है, इट्स ऑलवेज द वुमेन हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम. पर अब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपने दी है तो मैं गवर्नमेंट को ये अब रिक्वेस्ट करूंगी, जहां आपने इतनी स्कीम्स चलाई हैं वहां पर वुमेन की लीडरशिप की ट्रेनिंग का भी आपको स्टार्ट करना चाहिए. वुमेन को ये पता चले कि अगर उसने इलेक्शन कंटेस्ट करनी है तो व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द मींस, कैसे वो कर सकती है, और जब वो पार्लियामेंट में आती है तो पार्लियामेंट प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे वहां पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो उनको को तैयार करना, उसको अपनी पुरानी हिस्ट्री जो है वो बतानी चाहिए कि हम कहां से कहां चल के आए, ताकि जब वो पार्लियामेंट में आती हैं, जब उनको पॉलिटिकल पावर मिलती है तो दे शुड शो देयर कैपेबिलिटी उस फील्ड में भी दिखाएं, जहां हर फील्ड में उन्होंने दिखाई है. क्या आपने उनको इंजीनियर बनाया, हाउसवाइफ बनाया, मदर बनाया.
1: यहीं पर मैं एक बात आपसे अगर पूछूं, जो बात आप कह रही हैं, यहीं थोड़ा अगर आपसे समझें कि हम जब मेन फोक की बात करते हैं उनको तो इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली, तो महिलाओं के लिए फिर एक नई चीज आ जाती है कि अगर आपको आना है तो ये करके आना होगा, पहली चीज. दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूं, जब आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो उसमें बात आती है कि अगर महिलाओं में वाकई इतनी कैपेबिलिटीज हैं तो उनको मैंडेट मिलेगा, खुदा जाए वो रिजर्वेशन क्यों चाहिए. और एक बात और भी आती है मैम उसमें, ये कि जीत कर तो वो आ जाती हैं, सीट पे बैठ भी जाती है, लेकिन पीछे से रन कर रहे होते हैं उनके घर के जो मेल पर्सन होते हैं. तो बहुत सारी प्ली काउंटर इस तरह के क्वेश्चन और डाउट्स हैं, ये सब बहुत बार उठे हैं सवाल इस तरह के.
0: हाँ, जो था ना ये पति पंचायत, ये वर्ड भी कॉइन हुआ था जी. उसका सिर्फ रीजन यही है, आपने वहां पर रिजर्वेशन तो कर दी पर आपने औरतों को ट्रेन नहीं करा, आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, आपने उनको पॉलिटिकली एजुकेट नहीं किया. तभी मैं ये बात करती, दैट्स व्हाई द मेन दे यूज टू इंटरफियर इन एवरीथिंग. दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती. पर हमें उसकी रेमेडी, ये रेमेडी यही है कि औरत को पूरी लीडरशिप की ट्रेनिंग दो. अब कहते हैं ना आदमी अपने आप कर लेते हैं, आदमी अपने आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आदमी के लिए कोई चेकलिस्ट नहीं है. जैसे हम औरतों को पूरा मापते तोलते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, एज हाउसवाइफ कैसी है, एज मदर कैसी है, एज पॉलिटिकल लीडर कैसी है, वैसे हम आदमियों के मापदंड नहीं करते हैं. वो इलेक्शन तो वो जीत गए, लेकिन उनको आपने ये नहीं बताया कि आपका पार्लियामेंट में जाके रोल क्या है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लीडरशिप क्वालिटीज के लिए ट्रेनिंग औरतों को देनी, चाहे वो कॉलेजेस में स्टार्ट करें, चाहे वो एनजीओज इंट्रोड्यूस करें, जहां पर आप बाकी ट्रेनिंग देते हैं वहां पर ये भी एक आपका सिलेबस में होना चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करें, कि औरत को भी एम्पावर करो, और दूसरा औरत में कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आपने उसको कुर्सी पर बिठाया, जैसे वो घर को हैंडल करती है, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, वैसे वो ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी. पर औरत की कैपेबिलिटी पर डाउट मत करो, उसको भी आगे आने दो, उसको भी इक्वल राइट दो, इक्वल स्टेटस दो, डिग्निटी दो, तो औरत भी देखो कहां के कहां पहुंच जाएगी आपकी. देयर इज नो डाउट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स.
1: बिल्कुल बल्कि मैम मैं तो इसमें एक चीज और जोड़ूंगी, जो हमने सोसाइटी में देखा है जनरली, वो ये कि आपको क्वेश्चन क्या आता है आपकी एबिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को, आपकी शार्पनेस को, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो. अब जैसा कि हम देख रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अवेयरनेस है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है. आपने मैम एनजीओ की बात की अभी, तो हम थोड़ा सा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं. 100 ईयर्स कम्प्लीट हो रहे हैं और आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उसको, बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिए ना हमारे साथ.
0: हाँ, हम 100 ईयर्स कम्प्लीट कर रहे हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द सेंटनरी ऑन 8th of January, क्योंकि ARWC ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, इसके 100 ईयर्स कम्प्लीट होते हैं अभी 27 में, क्योंकि ये स्टार्ट हुई थी 1927 में, और बड़ी ही रिच हिस्ट्री है इसकी. ये स्टार्ट हुई एक छोटी सी बात से, एक बंगाल के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने औरतों को ये चीज कही कि तुम लोग कब तक आदमियों के कंट्रोल में रहोगे, तुम्हारी एजुकेशन में कब तक मेन जो है वो सिलेबस बनाते रहेंगे, आगे बढ़ो, बताओ आपको क्या चाहिए, और हम आपकी तब तक मदद करते रहेंगे जब तक आपका सब कुछ अचीव नहीं हो जाएगा. सो तभी फिर एक मैगजीन था चेन्नई में, WIA का ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी हमारा पार्ट है वो, उन्होंने उस मैगजीन में ये खबर को निकाला. एंड देयर वाज वन आयरिश लेडी, माइग्रेट कजन, हर हस्बैंड वाज अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेजेस, वो इंडिया में सेटल हुई थी. उसने जब ये पढ़ा तो उसने चारों तरफ ये فیلایا کہ عورتوں کو یہ ایک اپرچونٹی ملی ہے. تو سب سے پہلی جو عورتیں پورے دیش سے عورتیں جو تھی وہاں پر آئی, پونا میں فرگوسن کالج میں پہلی میٹنگ ہوئی. پہلی میٹنگ میں گائیکواڑ کی مہارانی تھی چمنا بائی, جو بہت ہی بڑی ویمن امپاورمنٹ والی تھی. اس نے دشہرے کے اس میں اپنا پردہ پبلکلی نکال دیا تھا کہ پردہ جو ہے وہ عورت کی ہیلتھ کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے, اس کی گروتھ کو امپیکٹ کرتا ہے. تو ان کو پریزیڈنٹ بنایا گیا. اس پہلی میٹنگ میں ہی 7 ریزولوشنز پاس کیے گئے. اور اس ٹائم بچیوں کی شادی 4-4 سال 5-5 سال کی ہو جاتی تھی, اور ایجوکیشن لیول واز 1% فار گرلز اینڈ 1 point something فار بوائز. تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن لڑکیوں کو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ دیر از چائلڈ میرج. سو آواز اٹھائی گئی کہ 14 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے 2.5 سال کے اندر اندر یہ قانون بنوایا. اس کے بعد یہ چلتی رہی. پھر انہوں نے رائٹ ٹو پراپرٹی بنایا. انہوں نے کہا کہ پیرنٹس نے کہا اگر شادی نہیں کریں گے لڑکیوں کو کیا کریں گے. انہوں نے کہا ایجوکیشن, دس از ہاؤ. پھر 3 ہمارے ایم ہے IWC کے, ایجوکیشن تھرو ایجوکیشن, ایمینسیپیشن, ایمینسیپیشن اینڈ دین ایمپاورمنٹ. ہم وی آر سیکولر اینڈ وی آر نان پولیٹیکل. اور ہماری آرگنائزیشن میں بہت بڑے بڑے اسٹالورٹس ہوئے ہیں جنہوں نے بہت بڑی, آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آج سے 100 سال پہلے کہ عورتیں اتنی دور تک سوچ سکتی تھی کہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے. لڑکیوں کو فائن آرٹ بھی سکھاؤ, ہوم سائنس بھی سکھاؤ, اور جو ویڈوز ہیں ان کو آگے کیسے لانا ہے. انہوں نے ویڈوز کے لیے سینٹرز بنوائے, وہاں وہ رہیں گی, ان کو ٹریننگ دی جائے گی, اور ان کو ہم اکنامیکلی امپاور کریں گے تاکہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں. آج سے 100 سال پہلے. تو ہماری سب سے مشہور جو ہے وہ ہنسا مہتا, جب بھی وہ یو این میں گئی ریپرزینٹ کرنے ہندوستان کو, تو وہاں پر یہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں یہ آیا کہ عورتیں اور آدمی برابر ہیں, آل مین آر ایکول. شی اسٹوڈ اپ, شی سیڈ نو, وائی شوڈ وی سے مین, وائی یو آر گیونگ پریفرنس ٹو مین, آل ہیومن بینگز آر ایکول. اس کے بعد سروجنی نائیڈو تھی, سروجنی نائیڈو کے بارے میں تو سب جانتے ہیں. اس کے بعد راجکماری امرت کور تھی. انہوں نے اپنا جو گھر تھا, انہوں نے اینڈ میں اپنا جو راجکماری ان کا تھا یہ پوزیشن, اس کو انہوں نے تیاگ دیا تھا. انہوں نے کہا میں ایک آرڈنری ویمن ہوں, میں خالی, میں راجکماری نہیں ہوں, میں خالی امرت کور, بیکاز شی واز دا فرسٹ ہیلتھ منسٹر ان انڈیپینڈنٹ انڈیا. انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز اور نرسز کی حالت, کام کرنے کے بعد ان کو ریسٹ چاہیے, ان کو ریلیکسیشن چاہیے. انہوں نے مسوری میں ان کا جو بنگلہ تھا وہ ان کو ڈونیٹ کر دیا کہ نرسز جو ہیں چھٹی لے کے وہاں جائیں فیملی کے ساتھ, ریلیکس کریں تاکہ ریجوینیٹ ہو جائیں اور آ کے وہ کام کریں. اور فنڈامنٹل رائٹس کو جب بنائے گا, اس کی کمیٹی میں راجکماری امرت کور اور رینو کور رہے. اور جو آپ کانسٹیٹیوشن کے ڈائریکٹو پرنسپلس کی بات کرتے ہو, وہ ان کے دوارا ہی کوائن کیا گیا تھا. تو یہ ہمارا ملک کی فریڈم میں, ملک کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہمارا رول ہے. پورے دیش میں ہماری 500 برانچز ہیں. پھر سال میں 2 کانفرنسز ہوتی ہیں جہاں سب مل کے ہم اپنے آئیڈیاز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. اور ہمارے ایجوکیشن ٹرسٹ ہے جو لڑکیاں ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن لینا چاہتی ہیں اور ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, تو ایجوکیشن ٹرسٹ سے ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. دوسرا جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, ہمارا ڈے کیئر سینٹر ہے. جیسے آج کل لڑکیاں جاب کرنے چلی جاتی ہیں, مدر ان لا یا مدرز اکیلی رہ جاتی ہیں, تو صبح 9 بجے ہم سینٹر پر ان کو بلا لیتے ہیں, اور وہاں آ کے ساری سیم ایج کی ہوتی ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ جیسے دیے کی بتیاں بنانا, جو میٹس ہوتی ہیں وہ بنانے سکھانا, کھانا دوپہر کا ان کو دیا جاتا ہے, ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں, اور شام کو 5 بجے وہ گھر چلی جاتی ہیں. اور سب سے امپورٹینٹ چیز ہے جس میں ہم ولیجز اڈاپٹ کر کے لوگوں کی میڈیکل کیئر کرتے ہیں, جیسے انیمیا ٹیسٹ کرتے ہیں, میڈیسن دی جاتی ہے, آئی سیٹ ٹیسٹ ہوتی ہے. مطلب جو گراس روٹ لیول کے جو بڑے ریموٹ ولیجز ہیں وہاں پر لوگوں کی ہیلتھ کی تھوڑی اویئرنیس بھی نہیں ہے, اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں. اور باقی ہر لیول میں, ہر فیلڈ میں, انوائرمنٹ میں, کلائمیٹ چینج میں, انٹرنیشنل لیول پہ ہماری پارٹیسپیشن ہے. یو این میں بھی ہر سال ہم ویمن ایشو پر پارٹیسپیٹ کر کے وہاں پر اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ سب والنٹری کام کرتے ہیں.
1: واہ واہ جی,
0: ہم یہی انجوائے کرتے ہیں کہ ہم آپس میں کام کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے, تو ابھی ہم اس خوشی میں سٹارٹ کر رہے ہیں. 22 نومبر کو वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगेंस्ट वायलेंस है, उसमें हम एक वैकाथॉन कर रहे हैं क्योंकि हमारे काफी सीनियर मेंबर्स हैं. नाम तो उसका मैराथन था पर हमने वैकाथॉन इसलिए करा कि काफी मेंबर शायद भाग नहीं पाएंगे
1: जी.
0: तो वो हम कर रहे हैं पूरे देश में पैन इंडिया. टी शर्ट्स हम उनको दे रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हमने सेंटनरी का लोगो भी बनाया है, हमारा पुराना AIWC का लोगो भी है, और वो लोग जो है वो एक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी जिसको कन्वीनियंट है वॉक करके, वी वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज, प्लीज स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. तो ये हमारा है.
1: बहुत बढ़िया.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
1: अभी आपने मैम बात की तो बस चलते चलते आपसे ये और समझे, आप बहुत सी कंट्रीज में भी आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया और अपनी बात भी रखी है. हम इसराइल की बात करें, काठमांडू है, आई थिंक आप पेरिस भी गए हैं.
0: पेरिस तो मैं 6 बार गई हूँ.
1: वाह वाह क्या बात है.
0: क्योंकि वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ मैं जुड़ी हुई और वहां पर वो मेरे को बुलाते थे, दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट इंडिया. और JS वर्मा की कमेटी के बाद जो अमेंडमेंट हुई लॉज में उसका क्या इम्पैक्ट है. फिर उनका मेन इम्पोर्टेंट हुआ करता था सरोगेसी के बारे में. सरोगेसी में मेरी उसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा, दैट इज माय स्पेशलाइजेशन, कि उसका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर क्या होता है और कैसे उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. तो मेरे को उसके लिए भी बुलाते थे. फिर एक बार मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर उनको बताया था कि हमारे कानून क्या है और हमारे जो पुराने सिस्टम अपने चले हुए वो क्या है, वो हमारे बिलीफ क्या है, वो सारा कंपैरिजन मैंने उनको बताया था. फिर मेरे को वहां के जो मेयर थी पेरिस की, उन्होंने इनवाइट किया था. फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे,
1: क्या बात,
0: उनके सामने फिर हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी. उनके सामने फिर मैंने ये प्रेजेंटेशन करी थी कि आज कैसे हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ रहा है, औरतों की हालत कैसे ठीक हो रही है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया आफ्टर JS वर्मा's वो स्ट्रिक्ट लॉस. उन्होंने उसके लिए मुझे इनवाइट करा था तो मैंने उसके ऊपर बोला था. इसराइल में भी ये था, इसराइल में मैंने जो अभी शक्ति सदन है उसमें मैंने 7 साल काम किया है
1: जी.
0: तो उन्होंने मेरे को इसलिए बुलाया था कि आप औरतों को एम्पावरमेंट के लिए उनको आप क्या क्या काम करती हैं उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, तो उसके बारे में मैं इसराइल गई थी. रशिया में भी वहां पर हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में प्रेजेंटेशन दी थी. और अभी नेपाल में तो हमारा लास्ट ईयर में गई थी जब व्हेन आई वाज सेक्रेटरी, उस टाइम वहां पर वो एक वुमेन का ग्रुप बना है. एशियन जो कंट्रीज हैं उनका अपना एक ग्रुप होना चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे. उसमें फिर हमने वहां जाके तो सरोगेसी के बारे में सबके साथ शेयर करा था कि उसका ये औरत पर क्या इम्पैक्ट है. तो वो जो नेपाल की प्रेसिडेंट थी, तभी लेडी प्रेसिडेंट थी, शी इनवाइटेड अस एट हर प्लेस आल्सो. सो सबसे जब मिलते हैं दूसरे कंट्रीज का जब पता चले जाए. इसराइल में गए, इसराइल में 15 दिन के लिए उन्होंने हमें रखा और सब कंट्रीज से वहां पर लोग आए थे, मैंने फिलीपींस तक के लोग आए थे. सभी इंटरेक्शन होती है, देन यू रियलाइज के बाकी कंट्रीज की क्या हालत है और आपके कंट्री के प्लस पॉइंट्स क्या हैं. फिर आप शेयर करते हैं कि हमारे मुल्क में ये होता है. जब दूसरे मुल्क से आप सीख के आते हैं कि ये होता है, दैट मैसेज यू ब्रिंग टू योर ओन कंट्री एंड यू कन्वे कि ये चीज वहां सक्सेसफुल हो रही है, सेम थिंग वी शुड आल्सो इंट्रोड्यूस.
1: बिल्कुल जी.
0: फिर उसके बेसिस पर हम ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में सेमिनार करते हैं अपने लोगों को बुला के. और हमारा एक मैगजीन निकलता है क्वार्टरली रोशनी, उसमें हम आर्टिकल मैं अक्सर लिखती हूँ फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखती हूँ और कैसे औरतों को एम्पावर किया जा सकता है, कैसे औरतों की एक्सप्लॉयटेशन कैसे खत्म, कुछ उसके फिगर देते हैं, कुछ हिस्ट्री भी देते हैं, सो दैट पीपल शुड लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. तो उसको फिर वहां पर हम यूज करते हैं. सो जहां भी मेरा हो सकता है, मैं 3-4 बार न्यूयॉर्क भी गई हूँ वहां जाके. और अभी कोरोना के दिनों में जब हम वहां नहीं जा सके तो हमने ऑनलाइन ये मैंने करा था द कंडीशन ऑफ वुमेन, जो वर्किंग वुमेन थी कोरोना के टाइम में उनकी क्या हालत हुई, क्योंकि मोस्टली घर से कर रही थी और अदरवाइज व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन लॉज, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो औरत को कैसे डबल रोल प्ले करना पड़ा और घरों में कितनी वायलेंस हुई. फिर मैंने उस वायलेंस की पूरी रिपोर्ट बना के भी यूएन में भेजी थी. तो पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो मीटिंग्स होती हैं जहां पर वो एनजीओ को बुलाते हैं कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि गवर्नमेंट को विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए. तो मैंने 3 बार उस पार्लियामेंट्री कमेटी में भी पार्टिसिपेट करा है जहां पर मैंने रिकमेंडेशन दी है अपने बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए.
1: सो ऑल इन ऑल मैम, हम ये कह सकते हैं कि आज का जो सिनेरियो उसमें कि जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश में फाइनेंस मिनिस्टर महिला हो, जिस देश की राजधानी की मुख्यमंत्री हैं वो महिला हो, तो हमें लगता है संदेश सबके लिए है कि आम जन परिवार इस बात को समझे कि अगर आप अपनी बच्चियों को, अपने घर की लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं तो सितारों से आगे जहां और भी हैं.
0: बिल्कुल ठीक.
1: और वो अगर सशक्त होंगी तो उसका डेफिनेटली जो लाभ है वो आपको भी मिलेगा. तो यही हम उम्मीद करते हैं. मैम चलते चलते आप कुछ अगर संदेश देना चाहें.
0: मैं यही कहना चाहती हूँ, मैंने आगे भी ये कहा कि अगर पहले हम कहते हैं ना एजुकेट अ वुमेन एंड यू एजुकेट द होल फैमिली, यू एम्पावर अ वुमेन एंड यू एम्पावर द होल कंट्री. क्योंकि औरत जो है वो पूरे हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वो है जो औरत है. औरत ही सबको चलाती है, घर भी चलाती है, बच्चों को पालती है, बच्चों को जो वो ये कहा जाता है कि मैं जो कैरिंग ए चाइल्ड, आपके जो उस टाइम वैल्यूज और आइडियाज हैं वो आपके बच्चों में जाएंगे. तो आप बच्चों को जब पालते पोसते हैं, अच्छे से पालते हैं, उसको वैल्यूज देते हैं, अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, हिस्ट्री के बारे में पता होगा, सोसाइटी के बारे में पता होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो शी विल ब्रिंग अप हर चिल्ड्रन ऑल्सो इन दैट वे एंड विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए वेरी केपेबल एंड इंटेलिजेंट सोसाइटी ऑल्सो.
1: ट्रूली जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुलजीत कौर मैम, आप सच में यहाँ पर आए और आपको बहुत बहुत बधाई. आपके ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस खुशी में भी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं. हम इतना इंग्रॉस्ड आपकी बातचीत में हो गए कि टेक्निकली बहुत सारी चीजें जो है वो जहन से रह गई और बहुत सी बातें अभी आपसे हमें और करनी थी, लेकिन आप जानती हैं थोड़ा वक्त की भी अपनी सीमा होती है. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन.
0: बहुत बहुत शुक्रिया तपस्या जी.
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण.

अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुंचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर ये टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक्स स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एंसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एंसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजीशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस तबिला सरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में वित्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खुजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट स्पष्ट जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। प्रवीण ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सेकटेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का 3रा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, प्रवीण, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे से ये तीनों खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे।
1: Much like this, 2 medals were confirmed earlier in squash as well. Youngsters Abhay Singh and Anahat Singh had made it to the singles final and assured at least a silver medal for themselves yesterday. Today, they featured in their respective gold medal matches. First was Abhay Singh in the men's singles final where he went down to Malaysia's Yan Yeo. Then, teenage prodigy Anahat Singh also suffered the same.

0: चेन यू फेई ने 3 गेम के मुकाबले में हराया। चेन यू फेई ने सिंधु को 21-11, 18-21, 21-10 से शिकस्त दी। करीब 75 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु ने दूसरा गेम जीतकर शानदार वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की 3 वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गई।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी, और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered 2 defeats in 2 Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग बुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा, आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स ईयर ऑन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahere. So, 4 Indian Kurash athletes in action today and all 4 have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last 8. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक।
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान

पे रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक सिर्फ फाइनल तक पहुंचे थे लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार एशियाई खेल में

0: दीप के साथ उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे रन में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बॉल में, कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड 2 का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड 3 में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 90 पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
2: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहाँ का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कम्पीटिंग टुमारो। इन द मेन्स लॉन्ग जम्प फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द वुमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द वुमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तक्रो डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपेक्षा प्रोग्राम नरंग।

नहीं हंसते, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना जैसे हम भूल गए हों। हालांकि मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे की जीनत नहीं बल्कि ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। आज का इंसान सहूलतों से घिरा हुआ है, मोबाइल, इंटरनेट, तेज रफ्तार जिंदगी, सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद दिलों में एक अजीब सी बेचैनी है। हम जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही अंदर से खाली होते जा रहे हैं, और इसी खला को भरने के लिए मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि हंसना और मुस्कुराना हमारी सेहत के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना वर्जिश करना या अच्छी ग़िज़ा लेना। सामीन, मुस्कुराहट न सिर्फ हमारे चेहरे की कशिश बढ़ाती है बल्कि हमारे दिलो दिमाग पर भी मुस्बत असर डालती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जिस्म में ऐसे कीमियाई मादे खारिज होते हैं जो हमें सुकून देते हैं। यह अमल जहनी तनाव और बेचैनी को कम करता है, इसलिए कहा जाता है कि मुस्कुराहट एक कुदरती दवा है जो बगैर किसी कीमत के हमें हासिल है। तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि मुस्कुराना दिमाग के उस हिस्से को मुतहरिक करता है जो हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है, यानी एक छोटी सी मुस्कुराहट हमारे पूरे मूड को बदल सकती है। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि अगर कोई एक शख्स मुस्कुराता है तो उसके आसपास के लोग भी गैर महसूस तरीके से मुस्कुराने लगते हैं। गोया मुस्कुराहट एक ऐसी रोशनी है जो एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल हो जाती है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि मुस्कुराहट एक ज़बान है, ऐसी ज़बान जिसे हर इंसान बगैर सीखे समझ सकता है। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि दुनिया में बहुत से लोग दिन में 20 बार से भी ज़्यादा मुस्कुराते हैं, जबकि बच्चे तो इस मामले में सबसे आगे हैं। तहकीक बताती है कि नौउम्र बच्चे दिन में तकरीबन 400 बार हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हंसी कम होती जाती है। आखिर ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि हम जिंदगी को बहुत संजीदगी से लेने लगते हैं, हम परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और खुशी के लम्हों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, ट्रैफिक में देर हो जाए तो गुस्सा, कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो बेचैनी, और यूं आहिस्ते आहिस्ते हम अपनी मुस्कुराहट खो देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुश रहना भी एक फ़न है, और इस फन की शुरुआत एक छोटी सी मुस्कुराहट से होती है। मुस्कुराहट न सिर्फ जहनी सुकून देती है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी उसके मुस्बत असरात होते हैं। हंसने से सेहत बेहतर होती है, दौरान खून अच्छा रहता है और पुठों को सुकून मिलता है, यहाँ तक कि यह हमारे फेफड़ों के लिए भी मुफीद है। माहिरीन का कहना यह भी है कि मुस्कुराहट हमारी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाती है, यानी हम बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। सामीन, एक दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती भी मुस्कुराएं, यानी दिल ना भी चाह रहा हो, तब भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है? जी हाँ, तहकीक के मुताबिक अगर आप मसनूई मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर ले आएं, तो दिमाग उसे हकीकत समझ लेता है और ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो आपको खुशी का एहसास देते हैं। यानी कभी कभी खुद को मुस्कुराने पर मजबूर करना भी फायदा देता है। मुस्कुराहट का ताल्लुक सिर्फ दिल से नहीं बल्कि हमारे दांतों से भी होता है। सामीन, माहिरीन के मुताबिक एक खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए दांतों का साफ और दुरुस्त होना बहुत अहम है। सीधे और साफ दांत इंसान को ज्यादा पुरेतमाद बनाते हैं, उसके बरक्स अगर दांतों में मसाला हो तो इंसान खुलकर मुस्कुराने से हिचकिचाता है, जिसका असर उसकी शख्सियत पर पड़ता है। डॉक्टर्स का कहना है कि दांतों की सेहत न सिर्फ हमारी मुस्कुराहट बल्कि हमारी मजबूती सेहत पर भी असरअंदाज होती है, इसलिए दांतों की सफाई और देखभाल बहुत ज़रूरी है। एक और अहम बात यह है कि मुस्कुराना दरअसल हमारे चेहरे के अज़लात की एक किस्म की वर्जिश भी है। जब हम मुस्कुराते हैं तो चेहरे के कई पुठे हरकत में आते हैं, जिससे चेहरा तरोताज़ा और मुतहरिक रहता है। इसके बरक्स जो लोग कम मुस्कुराते हैं उनके चेहरे पर सख्ती और संजीदगी ज़्यादा नज़र आती हैं। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए हमें छोटी छोटी खुशियों को अपनाना होगा। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, अपने घर वालों के साथ हंसना बोलना।

0: या सिर्फ एक अच्छा लम्हा महसूस करना, ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है। कभी किसी अजनबी को मुस्कुरा कर देखें, अक्सर वो भी जवाब में मुस्कुरा देता है और वो लम्हा दोनों के लिए खुशी का बायस बन जाता है। सामिन, याद रखें, मुस्कुराहट सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक तोहफा है। आपकी एक मुस्कुराहट किसी के दिन को बेहतर बना सकती है, किसी के दिल का बोझ हल्का कर सकती है। हर साल अक्टूबर के पहले जुमे को आलमी यौमे मुस्कुराहट मनाया जाता है ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि मुस्कुराना कितना ज़रूरी है। आखिर में बस यही कहना है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन अगर हम मुस्कुराना न छोड़ें तो ये मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं। तो आइए आज से ये अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट को जगह देंगे, खुद भी मुस्कुराएंगे और दूसरों के भी मुस्कुराने की वजह देंगे, क्योंकि मुस्कुराहट एक छोटी सी चीज़ है मगर इसका असर बहुत बड़ा होता है।
1: हर्फ ताबिंदा अभी आप सुन रहे थे, पेशकश थी मशकूर अहमद की।
2: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: यकीनन दोस्तों, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए हम महफूज सफर कर सकते हैं और हादसात से बच सकते हैं। आइए दोस्तों, प्रोग्राम निरंग को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं गीत सुरीले कातेजा में कुछ सुरीले गीत।

फिल्म तमाशा से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, सफ़र में इंसान का उठाया गया पहला कदम इसके अंदर के जमूद यानी स्टैग्नेशन को तोड़ता है। अक्सर हम अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात, काम के दबाव और शहर की गहमा गहमी में इस कदर गुम हो जाते हैं कि हमें खुद से गुफ्तगू करने का वक्त नहीं मिलता। लेकिन जब आप सफ़र पर होते हैं तो ख्वाह वो पहाड़ों का खामोश रास्ता हो या समंदर के साहिल की लहरें, आपको अपने वजूद का एहसास होता है। सफ़र इंसान को गुरूर से पाक करके आजिज़ी सिखाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसको लिया है हमने फिल्म स्वदेश से।

वैसे दोस्तों, अगर हम हमारे मुल्क भारत की बात करें तो सियाहत यहाँ महज एक इंडस्ट्री या सनत नहीं, बल्कि हमारी तहजीब और तारीख का हिस्सा है। लद्दाख की खामोश वादियों से लेकर केरलम के पुरसकून वाटरवेज तक, और राजस्थान के तारीखी इमारतों से लेकर मेघालय के खूबसूरत वादियों तक, हर खिता एक नई कहानी सुनाता है।

फिल्म वीर जरा से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। तो दोस्तों, सफर ट्रैवल सिर्फ फासले तय नहीं करता बल्कि इंसान की अंदरूनी कैफियत को भी बदल देता है। सफर का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि सफर के दौरान पेश आने वाले तजुर्बात को जीना है। जब आप किसी अनजान रास्ते पर चलते हैं तो हर मोड़ पर एक नया एहसास आपका मुंतजर होता है। ठंडी हवा का एहसास, परिंदों की चहचहाट, दरख्तों का साया, ये सब आपको याद दिलाते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आइए सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म रोजा से।

वैसे दोस्तों, हर सफ़र के बाद जब इंसान अपने घर वापस लौटता है तो वो पहले से मुख्तलिफ होता है। इसके पास नए तजुर्बात होते हैं, नई सोच होती है और दुनिया को देखने का एक नया जाविया होता है। सफ़र, सियाहत इंसान के जहन को कुशादा और दिल को वसी बनाता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसको लिया है हमने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से।

सामाइन अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत। प्रोग्राम नारंग के आखिर में आइए सुने पयाम शब, पेश कर रहे हैं सैदी।

0: जरा सी बात थी अंदेशाए अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेबे दास्तान के लिए। ज़िंदगी में हर बात को फ़ौरन बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारी बदगुमानी, खौफ और कयास आराइयां एक मामूली बात को पेचीदा बना देती हैं। किसी बात को आगे बढ़ाने से पहले उसकी हकीकत जानना और मामले को उसके असल हजम में देखना ज़रूरी है। छोटी बात को शक और अफवाह से बड़ा न बनाएं, हकीकत जानें, जज्बात पर काबू रखें और बात को बिला वजह ज़ेब दास्तान न बनाएं।
1: इसी पैम शब के साथ दोस्तों आज का नया रंग प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शब 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बज में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM रेनबो 101.9 MHz पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया।

0: किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और एलएनजी दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर एनसी सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रेनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking your calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. हेलो सुबोध.
1: धन्यवाद वैभव और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. ख्याल रखें कि हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ वैभव.
0: फर्स्ट द हेडलाइंस अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस एवरी

0: We want to promote local products. External Affairs Minister S. Jaishankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdraw over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far.
1: त्योहारी मौसम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धरत देशों से तनाव कम करने और वर्तमान संघर्ष के बीच ऊर्जा और व्यापार मार्ग खुले रखने का आह्वान किया और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से 17,000 करोड़ रूपये से ज्यादा की रकम निकाली.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Starting with our first headline, the Prime Minister Narendra Modi today said every region of India has a unique specialty ranging from agricultural products and traditional art forms to local skills. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the One District, One Product ODUP campaign seeks to promote these distinctive products and help them move beyond local markets to reach consumers across the country and abroad. He also linked the initiative with the Vocal for Local campaign, saying that promoting local products can contribute to the country's drive towards self-reliance. With the festive season approaching, the Prime Minister urged people to keep the spirit of local vocal for local in mind and support products made by local farmers, artisans, entrepreneurs and self-help groups.
1: पहले कॉलर से संपर्क हुआ है हमारा मुंबई. अमित हमारे साथ है, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर.
1: धन्यवाद
2: सर. मेरा सवाल था कि हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट फंड में डिफरेंस क्या है और इसमें हाइब्रिड फंड और मल्टी एसेट में एक एक नाम आप बता सकते हैं प्लीज, और ये क्या डेट फंड में अवेलेबल होते हैं? डेट फंड, सॉरी. थैंक यू
3: जी. देखिए, हाइब्रिड और मल्टी एसेट में आपने अंतर पूछा है, तो मल्टी एसेट एक तरह के हाइब्रिड फंड्स हैं. हाइब्रिड फंड्स एक ओवरऑल एक बड़ी अम्ब्रेला कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं और मोस्टली उनमें डिपेंड करता है कि वो कितने एसेट क्लास में कितने प्रतिशत अपना पैसा निवेश करते हैं. जैसे कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं, वो करीब 70-75% आपका पैसा इक्विटी और बचा हुआ डेट में निवेश करते हैं. बैलेंस्ड हाइब्रिड्स 50-50% आपका पैसा एलोकेट करते हैं. कंजर्वेटिव हाइब्रिड वहीं 25% इक्विटी और 75% डेट करते हैं. अब इसी बीच में मल्टी एसेट एक थोड़ी नई कैटेगरी है जिनका मैंडेट होता है कि वो कम से कम 3 एसेट क्लास में आपका पैसा डिवाइड करेंगे और अधिकतर देखा गया कि वो 3 कैटेगरीज होती हैं, तीन एसेट क्लास होती हैं, इक्विटी, डेट और कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड. अब अलग अलग मल्टी एसेट फंड जो प्रोपोर्शन इन तीनों एसेट क्लास का रखते हैं वो अलग अलग होता है. वो कोई फिक्स्ड, कोई एक बहुत प्रिस्क्राइब्ड मैंडेट नहीं है. अलग अलग फंड में देखा गया कि कुछ इक्विटी हैवी रहेंगे, कुछ तीनों में बराबर बराबर आपका पैसा निवेश करेंगे. तो वो निवेश से पहले आपको देखना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं. अब डेट और इक्विटी, देखिए टैक्स के नजरिए से देखें तो हाइब्रिड फंड्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. जो फंड 65% से ज्यादा आपका पैसा इक्विटी में निवेश करते हैं तो वो इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उनको इक्विटी वाला टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है और वहीं वो थोड़ा रिस्क रिटर्न उनका ज्यादा ऊंचे पैमाने पर रहता है. वहीं जो डेट हैवी हाइब्रिड्स होते हैं उनमें आपको डेट वाला टैक्स ट्रीटमेंट लगता है. गेन्स आपकी स्लैब पे टैक्स होते हैं, आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट पर, और रिस्क और रिटर्न का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उस पर डाउन द ऑर्डर आते हैं. तो ये काफी वेरी कर सकते हैं एक से दूसरा फंड, आपको इसको ध्यान से देखना होगा.
1: जी आशुतोष, हम कई बार देखते हैं कई निवेशक जो अच्छी जानकारी रखते हैं म्यूचुअल फंड बाजार की और कैसे निवेश करें, कौन सी कैटेगरीज हैं, और कई हमारे हमेशा हम नए निवेशक भी जुड़ रहे हैं क्योंकि एसआईपी के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे भी पता लगता है. नए निवेशकों की अद्भुत दुविधा देखने को मिलती है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे एजेंट्स और एडवाइजर्स से सलाह लेते हैं और कौन सी सलाह अच्छी है कौन सी नहीं है. चले अगले कॉलर के पास. वैभव,
0: एब्सोल्युटली. आवर नेक्स्ट कॉलर इज जितेंद्र फ्रॉम जयपुर. जितेंद्र जी, वेलकम टू मार्केट मंत्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर. जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए.

0: लगता है कुछ
1: जितेंद्र जी से कुछ संपर्क तो हुआ, लेकिन आवाज और शोर कुछ ज्यादा है
0: जी। तो हम अपनी बातचीत जारी रखें आशुतोष की।

0: शुरू कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है या कहाँ है, अगर कोई एजेंट या एडवाइजर किसी नए निवेशक को सलाह देता है कि आप किसी एक तरह के फंड में, मान लीजिए आप अपना 70% पैसा लगा दीजिए स्मॉल कैप फंड्स में, तो क्या आप बोलेंगे कि क्योंकि अभी उसके रिटर्न्स अच्छे दिख रहे हैं, क्या ये अच्छी सलाह है? क्योंकि खास करके ऐसे निवेशक के लिए जिसको पता ही नहीं है कि वो स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है।
1: तो देखिए, आपके सवाल पर मुझे एक चीज याद आती है कि एनएससी का जो टैगलाइन है, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, तो निवेशकों को सबसे पहले वही करना है कि आपको कोई भी कुछ भी रिटर्न्स का प्रलोभन दे, आपको अपने आप से, क्योंकि आपका पैसा है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, थोड़ा आपको सोच समझ कर निवेश करना है। स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिटर्न अच्छे देते हैं, हिस्टोरिक रिटर्न उनके काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ऐसे फेस भी आते हैं कि जब वो काफी धड़ाम से गिर जाते हैं, जब मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा देखा गया गिरते हैं, तो उसका टॉलरेंस होना जरूरी है। लेकिन शुरुआती निवेशकों के लिए, जब तक उनको फेमिलियरिटी नहीं है, इंडेक्स फंड एक बड़ा ही सरल और सुगम तरीका है जिसमें डिसीजन मेकिंग आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ती। इंडेक्स फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड से वो शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि उनका रिस्क थोड़ा कंट्रोल में रहता है, और अगर जानकारी का अभाव भी है तो इन फंड्स में आप फिर भी थोड़े मॉडरेट रिस्क के साथ अपना पहला कदम मार्केट के निवेश की ओर रख सकते हैं।
2: एंड आवर नेक्स्ट कॉलर इज योगेश फ्रॉम दिल्ली। योगेश, यू वेलकम टू मार्केट मंथ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि जैसे वॉरेन बफेट के बराबर कहते हैं कि बाय एंड होल एंड बाय एंड होल फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म, सो डू म्यूचुअल फंड हाउसेज दे देमसेल्फ बाय अ स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर लाइक सिंस मैनी ईयर? बिकॉज आई नोटिस अलॉट दे डू अलॉट ऑफ चर्निंग विद देयर पोर्टफोलियो, सो दे बाय एंड देन दे सेल समटाइम, सो इज देयर एनी स्टडी ऑन दैट के what is the longest duration that a mutual fund AMC hold a stock for the longest term?
2: Ashutosh, the investor is trying to get into the minds of the fund manager. Your view, sir?
1: Yeah. So while I won't have a specific study or a number to quote on this, but it will always be a mixed bag. You will find funds which say that they are on a buy and hold strategy, but there are other funds which say that they don't mind churning, they don't mind getting in and getting out. Different kind of funds, different fund managers, different mandates, and you will find the behaviors could be different. Even in the same fund, a lot of fund managers, what they call as their portfolio construction strategy as a core and a satellite approach, where they would have a core component in the portfolio, which are stocks which they consider as all-weather stocks, which they'll continue to hold through the ups and downs of the market. And then there is a satellite portfolio where they take slightly more opportunistic, slightly more tactical calls depending upon the prevalent macroeconomics, which industries or themes they think will benefit, and then they move in and they move out. So portfolio construction, managing your money is a fairly complex task, better left to the fund manager, better left to their discretion and judgment, and you would find all shades of gray.
0: और श्रोताओं को हम याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। और अगर आपको म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने कहा है कि ईरान के प्रस्ताव पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआती प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन ईरान मध्यस्थों के माध्यम से औपचारिक प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थों के साथ बातचीत में ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए योजना और शर्तें रखी थी, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तय की थी। श्री अराकची ने कहा कि ईरान ने कूटनीति के दरवाजे बंद नहीं किए हैं और वह ईरान के लोगों के अधिकार और जायज मांगों के लिए बातचीत से समाधान निकालने के पक्ष में है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने अडिग रहेगा। उधर श्री ट्रंप ने ईरान के 7 दिन के संघर्ष विराम और होर्मुज को फिर से तुरंत खोलने के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया है कि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे।

0: Moving to our next story, India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during ongoing conflicts. Addressing the UN General Assembly in New York last night, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar pointed out that the repercussions of wars are experienced far outside the borders of directly engaged nations. Referring to the protracted Russia-Ukraine conflict, the minister said the ongoing war remains a critical international concern and echoed Prime Minister Narendra Modi's call for an end to hostilities. On the Gulf conflict, Dr. Jayashankar said the hostilities are exacerbating an already difficult situation.
1: This year, we are witnessing a conflict in the Gulf, one that is exacerbating an already difficult situation. We remain deeply concerned over continuing hostilities. The targeting of commercial shipping and seafarers transiting international waterways is simply unacceptable. India calls upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce.
0: Dr. Jayashankar also said that the world is witnessing weaponization of everything from finance and market access to supply chains and technology. He said countries are responding by reducing risks and diversifying their ties. Dr. Jayashankar described a 4F crisis confronting the global south, the security of food, fuel, fertilizer and finance. And once again, Jitendra from Jaipur is rejoining in Market Month. Jitendra ji, swagat hai Market Month mein, apna sawal poochhe.
2: Hello, haan sir, this is ye ek hamara multi cap fund chal raha hai Mahindra Manu Life mein. Ek aur hum chahte hain multi cap fund to bata dete jaise ek aur kholne ke liye. Aur isme ek fund aaya tha naya abhi just 15 din pehle, active momentum fund. तो किसको ट्रैक करता है, कुछ आइडिया है क्या सर? एक्टिव मोमेंटम फंड.
3: तो देखिए, नए फंड से मेरा सुझाव रहेगा कि थोड़ा आप बचें. एक्टिव मोमेंटम फंड, उसकी स्ट्रेटेजी मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की रहेगी. एक्टिवली मैनेज रहेगा, तो एक्टिव मोमेंटम का मतलब है एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड जो कि मोमेंटम एक उसकी स्ट्रेटेजी का मेन फैक्टर रहेगा जिसके बेसिस पे वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेगा. और अगर मोमेंटम एज अ थीम, एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चलता है बाजार में, तो आप इस फंड से रिटर्न्स की अपेक्षा कर सकते हैं. लेकिन नए फंड से मेरे ख्याल इन्वेस्टर्स को बचना चाहिए. कुछ भी ऐसा नोवेल्टी कोई भी नया फंड नहीं देता है कि आपको उसके एनएफओ के टाइम पे ही उसमें निवेश करना है. उसको समय दीजिए, अपने आप को प्रूव करने दीजिए मार्केट में. अच्छे रिटर्न अगर वो देता है, कंसिस्टेंसी के साथ देता है, तो उसमें निवेश करने की सोचें. और इसी तरह आप अपना मल्टी कैप फंड भी कोई ऐसा फंड का चुनाव करें जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न. मल्टी कैप फंड को आए हुए मार्केट में करीब 5-6 साल हो गए हैं. 5-6 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है जब ये कैटेगरी सेबी द्वारा नई बनाई गई थी. तो आप कोई भी ऐसा फंड जो, और इस बीच में मार्केट के उतार चढ़ाव के दौर भी मार्केट ने देखे हैं, थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट कोई ऐसा फंड का चुनाव करके निवेश करें जिसने कंसिस्टेंटली रीजनेबली अच्छे रिटर्न दिया. नेवर चेज द हॉटेस्ट परफॉर्मर. एकदम जो टॉप परफॉर्मर है कभी भी उस फंड के पीछे जरूरी नहीं है कि वही सबसे अच्छा फंड हो. ऐसा फंड का चुनाव करें जो कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के रखता है और मार्केट के उतार चढ़ाव में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हिलती डुलती नहीं है. वो अबव एवरेज अगर हर टाइप के मार्केट के माहौल में आपको अनुभव दे पाता है, तो मेरा ख्याल वो एक अच्छा फंड होगा
4: जी. और अगले कॉलर है दिल्ली से राजेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
5: मैंने कुछ म्यूचुअल फंड होल्डिंग डीमैट होल्डिंग में ले लिया था. डीमैट होल्डिंग में रिडम्पशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है. अब मैं उसे डीमैट से अलग निकाल के कर सकता हूं क्या? यदि हाँ, तो क्या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी?
3: जी, तो आप डीमैट होल्डिंग्स को आपने पहला बात, आपकी जो टिप्पणी है ये बिल्कुल सही है कि डीमैट होल्डिंग्स को बेचना आप उसी ब्रोकर के थ्रू वहीं पे बेच सकते हैं जहां से आपने खरीदा है. अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो एक साधारण जरिया होता है म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करने का, जिसको एसओए फॉर्मेट या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट बोलते हैं, वो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है. आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी म्यूचुअल फंड खरीद भी सकते हैं और किसी और प्लेटफॉर्म पर उसको बेच सकते हैं. तो आपके पास उसमें ट्रांजैक्शन करने के सुविधाएं और साधन ज्यादा उपलब्ध हैं. तो एसओए फॉर्मेट एक आम म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए मेरी राय में बेहतर, ज्यादा सुगम तरीका है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का. अब रही बात आपकी डीमैट होल्डिंग्स की, तो बिल्कुल आप उनको एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट

0: कट कर सकते हैं, इसके लिए अपने इन्वेस्टर सर्विस से आप कॉन्टैक्ट करें जिस भी एएमसी में आपका निवेश है. कुछ आपको उसमें डॉक्यूमेंटेशन करना होगा और आपकी यूनिट्स डीमैट से एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप उनको कहीं भी खरीद बेच पाएंगे और आपकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रहेगी. तो अगर आप शायद आपका इशारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबिलिटी की तरफ है तो बिल्कुल आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी वहीं से आपकी होल्डिंग पीरियड को काउंट किया जाएगा.
1: आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक 17,131 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेच दिए हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार 25,682 करोड़ रुपए स्टॉक एक्सचेंज में हुई बिकवाली से निकाले गए, लेकिन प्राइमरी मार्केट में एफपीआई ने निवेश कायम रखा और सितंबर में अब तक उन्होंने इसमें 8,551 करोड़ रुपए डाले हैं. विदेशी निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय ऋण बाजार से भी निकासी का रुख कायम रखा है. एफएआर के जरिए उन्होंने 7,385 करोड़ रुपए निकाले, वीआरआर के जरिए 3,021 करोड़ रुपए और जनरल लिमिट रूट से 1,889 करोड़ रुपए निकाले हैं. और अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
2: नमस्ते सर.
1: नमस्ते
2: सर, रियल एस्टेट कंपनी पिछले कई सालों से बहुत मतलब पिछले साल दो साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है वो बेसिकली वो कवर करता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज और रेजिडेंशियल कवर नहीं करता है. ऐसी बात ये बात सही है क्या? रेजिडेंशियल कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो उछाल आता है उसको वो कैप्चर नहीं कर पाते, दे आर मोर इन टू ये जो प्रॉपर्टीज होती है अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज मॉल प्रॉपर्टी उसी को कवर करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. तो इसी से संबंधित इससे सवाल है कि क्या कोई ऐसे फंड होते हैं जो रियल एस्टेट कंपनीज को में ही इन्वेस्ट करते हैं या उनके ऊपर ज्यादा फोकस हो, ऐसा कुछ फंड है क्या जो इस पर उस पर ध्यान दिया जाता है या फ्लेक्सी कैप विल बी एबल टू कैप्चर द रियल एस्टेट मार्केट ग्रोथ? थैंक यू सर.
0: जी तो देखिए, रीट्स अपने आप में एक अपकमिंग एसेट क्लास है. इंडिया में अभी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रेवलेंट नहीं है, बट ये अपकमिंग सेगमेंट है. सेबी का भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस है, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. अभी हाल फिलहाल में रीट्स को एक अपशॉट देने के लिए उनको इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स का दर्जा दिया गया है, जिससे कि वो जो इंडेक्स होते हैं मार्केट इंडेक्स होते हैं उनमें रीट्स की भी एंट्री हो पाए. तो रीट्स को प्रमोट करने के लिए सेबी अपना काम कर रहा है. आने वाले टाइम में होपफुली रीट्स एज एन एसेट क्लास आपको उस पर ऑप्शंस ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा वेरीड टाइप के रीट्स की अवेलेबिलिटी होगी. आपका सवाल म्यूचुअल फंड्स में, तो देखिए जो स्टैंडर्ड अभी तक जो वनीला म्यूचुअल फंड्स रहे हैं उनमें आपको रीट्स का एक्सपोजर काफी लिमिटेड ही मिलता है, लेकिन हाल फिलहाल में एक दो फंड आए हैं जो रीट्स पे ही फोकस करते हैं, रियल एस्टेट पे फोकस करते हैं. उनका मैंडेट है कि वो आपका पैसा रीट्स में इन्वेस्ट करेंगे और अगर रीट्स में उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो रियल एस्टेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे. बहुत नए फंड हैं, एक का तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो एनएफओ पीरियड ही चल रहा है, तो इनको आप आइडियली थोड़ा समय दीजिए ये कैसा परफॉर्म करते हैं. अगर आप काफी इंक्लाइंड हैं तो बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करके आप देख सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहता है इनमें, बट इनको थोड़ा समय दीजिए और आने वाले टाइम में मेरा ख्याल ये सेगमेंट में आपको ऑप्शंस काफी मिलेंगी.
3: And we're joined in by Dinesh from Delhi. Dinesh, welcome to Market Month. Please ask your question.
4: Namaskar, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से.
3: जी नमस्कार.
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं म्यूचुअल फंड में इक्विटी कंपनी, वो जब डिविडेंड अनाउंस करती हैं तो वो डिविडेंड का अमाउंट कहाँ जाता है और क्या वो एनएवी को अफेक्ट करता है और इस बारे में क्या कोई थर्ड पार्टी ऑडिट होता है टू इंश्योर दैट द डिविडेंड इज इंटेंडेड टू गो टू द प्लेस वेयर इट इज सपोज टू बी? थैंक यू.
0: जी तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स में पहली बात तो डिपेंड करता है कि आप जो म्यूचुअल फंड स्कीम होल्ड करते हैं, जो आप प्लान होल्ड करते हैं, वो आप डिविडेंड प्लान है कि ग्रोथ प्लान है. डिविडेंड प्लान्स को म्यूचुअल फंड्स में आईडीसीडब्ल्यू प्लान्स के नाम से जाना जाता है. तो अगर कोई फंड डिविडेंड कोई आप ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आपने सुना कि उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन अगर आप उसका ग्रोथ वेरियंट ओन करते हैं तो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा. तो कई बार मैंने देखा है कि ये कुछ इन्वेस्टर्स को ये थोड़ा सा गलतफहमी हो जाता है कि इसका अभी मैंने सुना था डिविडेंड आया लेकिन मेरे पास नहीं आया। वो काफी बार वो कारण यही होता है कि आप शायद ग्रोथ प्लान में उस फंड के इन्वेस्टेड होंगे, डिविडेंड प्लान में नहीं। बाकी म्यूचुअल फंड्स में देखिए डिविडेंड कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। जब मानिए एक फंड है जो कि 20 रुपए की एनएवी पे ट्रेड कर रहा है और वो फंड 1 रुपए का डिविडेंड

0: अनाउंस करता है, तो वो एक रुपया जो भी डिविडेंड प्लान के निवेशक हैं उनको उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जितनी भी वो यूनिट्स होल्ड करते हैं उसके हिसाब से, और उनके फंड की एनएवी 20 रुपए से 19 रुपए हो जाएगी। तो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स में कुछ एक्स्ट्रा लाभ नहीं है, वो आप ही का पैसा थोड़ा सा रिडीम कर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ये बिल्कुल ये सटीक तरीके से किया जाता है। आरटीएस जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के निवेशकों का रजिस्टर ओन करते हैं, जहां पे बड़ी सटीकता के साथ सारे फंड निवेशक, उनकी कितनी होल्डिंग्स हैं, सब कुछ दर्ज होता है, तो बड़े प्रिसिशन के साथ ये डिविडेंड का काम किया जाता है। इट इज सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंट ऑडिट। म्यूचुअल फंड्स जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, एएमसी का जो स्टेट्यूटरी ऑडिट होता है वो एक अलग होता है, और म्यूचुअल फंड के जो अकाउंट्स होते हैं वो एएमसी से अलग अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स टेक्निकली अगर देखें तो एक ट्रस्ट ओन करता है, और जो म्यूचुअल फंड्स के खाते होते हैं वो एक अलग इंडिपेंडेंट ऑडिटर को ऑडिट करके सर्टिफाई करने होते हैं। तो काफी वेल रेगुलेटेड वो है। ऐसा हो सकता है कि कुछ बहुत पुराने निवेशक जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग उनके अकाउंट में दर्ज नहीं है, तो ऐसा है कि डिविडेंड का पैसा अनक्लेम्ड रह गया है, तो लेकिन ये एज अ निवेशक आपको एंश्योर करना होगा कि आपकी प्रॉपर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके फोलियोज में मैप्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग के जरिए वो सक्षम है कि बैंक आपके बैंक अकाउंट में सीधा आपके डिविडेंड की रकम को वो ट्रांसफर कर दें। तो अगर आपने ये एंश्योर किया है तो डिविडेंड का पैसा जरूर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप एएमसी के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करें, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको फिर भी लगता है कि आपके साथ कुछ शायद धोखाधड़ी हो रही है, तो आप बिल्कुल सेबी पे उनके स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं और जरूर कार्रवाई होगी
1: जी। और नई मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर व्यवस्था अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगी। इसके तहत 2000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा। आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि स्थानीय बाजारों में क्यूआर कोड स्कैन करने पर क्या ग्राहकों से कोई शुल्क लिया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कहा है कि स्थानीय बाजारों, रेहड़ी पटरी वालों या छोटी खुदरा दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। एनपीसीआई ने यह भी साफ किया कि क्यूआर कोड से भुगतान करने वाले ग्राहक से किसी भी राशि की खरीदारी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2: Our next caller is Shankar from Chennai. Welcome to Market Month. Please ask your question.
3: Sir, good evening.
2: Good evening, sir.
3: I have a query related to mutual fund investments for NRI. Please listen to this query carefully because it's a very unique query. Okay?
2: Sure.
3: And answer me if in case of advice, please let me know. For a NRI relative who is staying in Germany, he is already investing through a mutual fund distributor through DMAT account. Okay, sir? Now, his mother passed away and he wants to have the mother's things which he will acquire in his NRO account, okay, to be invested in mutual fund. But the mutual fund distributor says one more DMAT account need to be opened because the current DMAT account is only for NRE account investment. Is this correct, what the regulation says, and what is the advice? Because having two DMAT accounts is cumbersome, am I right? Are there any exceptions? Who can guide me correctly on?
0: Well, I'm afraid I also may not be 100% sure because of the very specificity of this query, but I'm inclined to believe that what your distributor is saying is right, because in the DMAT account, if an NRE account is already linked, then you may not be able to link an NRO account with the same DMAT account, and that could be the reason. So it is not about the DMAT account per se, but likely related to the NRE and the NRO status, two different accounts which may not be feasible here, but something which needs to be ensured, and this is my opinion, this is my gut feel, but I'm afraid I won't be able to answer with 100% surety right now.
1: जी, और अगली खबर पे नजर डालें, देखें सोने और चांदी का हाल। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ट्रेजरी यील्ड में बढ़त और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की उम्मीद से निवेशकों ने कम उत्साह दिखाया। एमसीएक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 2.3% की गिरावट के साथ 1,50,881 रूपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। दिसंबर अनुबंध की चांदी के वायदा भाव में 2.8% की कमी।

0: आई और ये 2,34,696 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अक्टूबर अनुबंध का सोना 2.3% गिरकर $4,287.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 3.5% लुढ़ककर $64.80 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर आ गई।
1: Domestic investors are expected to closely monitor key market triggers, including macroeconomic data, geopolitical developments, foreign institutional investor FII flows, commodity prices, bond yield movements, and currency fluctuations during the holiday shortened week ahead. Indian equity markets will remain closed on Friday on account of Mahatma Gandhi's Jayanti. Market participants will focus on industrial production data, IIP, monthly auto sales figures, GST collection data, and the HSBC manufacturing PMI reading. The primary market is also set for another busy week, with 4 main board IPOs scheduled to open for subscription. Globally, investors will closely monitor developments surrounding the West Asia conflict. In the United States, personal consumption expenditure PCE and jobs data will remain on investors' radar. Meanwhile, inflation and trade data from South Korea will also be closely watched by market participants.
0: आशुतोष 10 सेकंड में बता दें हमें कि अगर हमारा कुल निवेश कुछ 30,000 रुपए का SIP चल रही हो तो उसका हम कितना प्रतिशत स्मॉल कैप में रखें अगर हमें बहुत लालच आ ही रहा हो तो।
2: देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको डर नहीं लगता, आप रख सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल अपना 20-25% तक पैसा आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं।
0: जी आशुतोष कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के और हमारे भी सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी
1: धन्यवाद। The headlines once again ahead of festive season. Prime Minister Narendra Modi urges everyone to promote local products. External Affairs Minister S. Jaishankar calls upon all warring nations to de-escalate tensions and keep energy and trade routes open during ongoing conflicts. And foreign portfolio investors withdrew over 17,000 crore rupees from Indian equities in September so far. That's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:41 और 9 सेकेंड। और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत का। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदा। संगीत की दुनिया में कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो वक्त की सरहदें पार कर सीधे दिल तक पहुंचते हैं, और आज की शाम भी कुछ ऐसे ही बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। और सबसे पहला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से, और यह फिल्म आई थी 1961 में, उसका नाम था जंगली, और संगीत था उस दौर के मशहूर जोड़ी शंकर जयकिशन की। फिल्म के ज्यादातर गीतों को अपनी धुनों से सजाने वाली इस जोड़ी ने इस गीत में भी एक बेहद दिलकश एहसास पैदा किया। गीतकार हसरत जयपुरी के अल्फाज और आवाजें मुकेश साहब और

आशा जी की, यानी एक तरफ मुकेश साहब की सादगी भरी आवाज और दूसरी तरफ आशा जी की चुलबुली अदा, और नतीजा एक ऐसा नगमा जिसमें मोहब्बत भी है, शरारत भी, और नजरों की वो खामोश गुफ्तगु जिसे सिर्फ दिल समझ सकता है। तो आइए गोल्डन एरा के उसी महफिल में कुछ पल ठहरते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां आंखों में भी बात करने की सलाहियत हुआ करती थी और गीत दिल की जबान बन जाया करते थे। तो आइए इसी सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसी बेहद खूबसूरत नगमे के साथ।

जंगली फिल्म का है बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। गीत मेरे मनमीत की ये बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों जिंदगी भी अजीब दास्तान है ना? कभी ये हमें हरे भरे रास्तों पर ले जाती है तो कभी किसी पुराने गीतों की याद में हमें रोक लेती है। और जब बात हो फिल्म हरियाली और रास्ता की तो आंखों के सामने खुद ब खुद पहाड़, हरियाली और धुंध से ढकी वादियां उतर आती हैं। साल था 1962 का और ये फिल्म आई थी हरियाली और रास्ता, जिसकी ज्यादातर शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी।

खासतौर पर गिंग टी एस्टेट और रंगी टी एस्टेट की दिलकश वादियों में। फिल्म के नायक मनोज कुमार साहब के लिए यह फिल्म बेहद खास रही। इसी फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों का रास्ता दिखाया जो पीछे मुड़कर फिर कभी नहीं देखे। इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन की बेहद खूबसूरत धुन से सजा, लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां इस नगमे में एक राजा और रानी की कहानी की बात हो रही है।

एक था राजा एक थी रानी, आओ सुनाऊं एक कहानी। लता जी की आवाज में ये नगमा था फिल्म हरियाली और रास्ता से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गोल्डन एरा यानी सुनहरे दौर के गीतों की, गीत मेरे मन में। दोस्तों, इश्क की भी अपनी अजीब रिवायत होती है। कभी ये चांदनी बनकर दिल को सुकून देता है और कभी एक जलते हुए चिराग की तरह दिल में ऐसी हलचल पैदा कर देता है कि इंसान कह उठता है, ओ शमा मुझे फूंक दे। आज ये हमारी महफिल अब चलती है 1962 की तरफ, और 1962 में एक फिल्म आई थी आशिक। फिल्म के निर्देशक थे संवेदनशील फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी साहब, और पर्दे पर नजर आए राज कपूर, नंदा और पद्मिनी। मगर दोस्तों, इस नगमे की असली खूबसूरती, इस फिल्म के इस नगमे की असली खूबसूरती है इसके अल्फाज और आवाजों का वो संगम। शैलेंद्र की शायरी, शंकर जयकिशन की दिलनशी धुन और मुकेश और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजें। मुकेश जी की सादगी और लता जी की नफासत जैसे एक ही एहसास के दो रंग। तो आइए उस दौर की एक बेहद खूबसूरत मोहब्बत भरे नगमे की तरफ चलते हैं और सुनते हैं फिल्म आशिक का ये बेहद प्यारा खूबसूरत नगमा। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

आशिक फिल्म के इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए गीत मेरे मनमीत से इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात को बेहद उपयोगी बताया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम मिलेंगे किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पर, हम मिलेंगे किसी ना किसी दिन किसी मोड़ पर, जैसे दो रेखाएं मिलती हैं कभी ना कभी, और अगर हम समांतर निकले तो मिलेंगे अनंत में, जहां ये झूठ हर रोज दोहराना नहीं होगा कि मुझे तुमसे प्यार है। एक मेगा हर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 10 सेकंड। निशिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम के।

रिश्तों में कह लीजिए या फिर प्यार में कह लीजिए, नाराजगी बहुत ही दिलचस्प होती है ना, क्योंकि नाराजगी से हम ये समझ पाते हैं कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। और अगर आप प्यार में हैं और आपके रिश्ते में छोटी छोटी नोक झोंक हैं, शिकायतें हैं, तो समझ जाइए कि आपका प्यार गहरा है। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि जब दिल किसी को अपना मान लेता है, किसी को अपना स्वीकार कर लेता है, तो फिर बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है प्यार की भाषा बहुत आसान होती है, बस दिल वफादार होना चाहिए। अगला गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज में।

वैसे जब दिल चुरा लिया हो तो फिर नजरें चुराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मोहब्बत में दिल हारना तो बहुत आसान है, पर किसी की आंखों में आंखें डालकर अपनी चाहत को बयां करना सचमुच बहुत हिम्मत का काम है। और जो ये कर लेता है वो अपना प्यार, अपनी मोहब्बत जीत जाता है। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, आप ही के लिए।

तुम मेरी सोच हो, कोई तुम्हें सोचे क्यों। तुम मेरी चाहत हो, कोई तुम्हें चाहे क्यों। तुम मेरा आईना हो, कोई तुम्हें देखे क्यों। तुम मेरी दुआ हो, कोई तुम्हें मांगे क्यों। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:41 और 55 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल। निशिगंधा सुन रहे हैं आप, और अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

ये तो सच बात है कि जब हमारी जिंदगी में कोई खास इंसान आ जाता है जिसे हम पसंद करते हैं या जो हमें पसंद करता है, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है और ये दुनिया पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। सुबह की धूप में ताजगी और हवा ज़्यादा खुशबूदार लगती है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा खास इंसान है जिसकी मौजूदगी से आपकी दुनिया हसीन बनती है, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपकी माँ हो, तो आपको हर पल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास वो पल नहीं होता। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नहीं नहीं मुझे आपका इंतजार है। फिलहाल वक्त है समाचारों का और ऋषिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी कि 1 बजे होंगे समाचार और फिर आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच आज हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में कल एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश

0: टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 रुपए से अधिक के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2000 रुपए से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। भारतीय वायुसेना ने जोधपुर वायुसेना केंद्र पर अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के परिचालन चरण की शुरुआत कर दी है। मित्र देशों की साझेदारी में शक्ति विषय पर आधारित यह अभ्यास अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास में 7 मित्र देश ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर. मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू. वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकंड. गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत. कार्यक्रम का आगाज करते हैं महेंद्र कपूर की आवाज के साथ.

महेंद्र कपूर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म ये रात फिर ना आएगी से, और संगीत था ओपिन अय्यर साहब का और गीतकार थे एसएच बिहारी। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म में अभिनय किया था पृथ्वीराज कपूर, विश्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और शैलेश कुमार ने। मुमताज ने और शैलेश कुमार ने इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका निभाई थी। और अगला गीत आप तक पहुंच रहा है गीता दत्त और रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस 55 और आवाज़ें थी गीता दत्त और रफ़ी साहब की, संगीत ओपी नैयर साहब का। और अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म 1955 में रिलीज़ हुई थी और ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण दोनों ही गुरुदत्त साहब ने किया था। इस फिल्म की पटकथा लिखी थी अबरार अलवी ने और ये एक फिल्म सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। और इस फिल्म में मधुबाला ने अनीता वर्मा के किरदार का अभिनय किया था और ये फिल्म कमर्शियली भी काफ़ी हिट रही थी और दर्शकों ने इसे काफ़ी सराहा भी था। और अगला गीत आशा जी की आवाज़ में

फिल्म हावड़ा ब्रिज से सुन रहे थे आप ये बेहद खूबसूरत गीत। और इस गीत के गीतकार थे कमर जलाल आबादी। इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म रिलीज हुई थी 1958 में और ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था शक्ति सामंत ने। फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था ओपी नैयर साहब ने और ये फिल्म रंगून के एक बिजनेसमैन पर आधारित थी और जो अपने भाई के कातिलों को पकड़ने के लिए कलकत्ता जाता है। ये फिल्म रिलीज के समय क्रिटिक्स और कमर्शियली बहुत सफल रही थी। अगला गीत गीत आदत और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म सीआईडी से।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:38 और 32 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने, अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम तीन देवियाँ और ये फिल्म आई थी 1965 में और इस फिल्म में संगीत दिया था एस जी बर्मन ने और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे देवानंद दंदा, कल्पना मोहन और सिमी गरेवाल। ये फिल्म एक ऐसे कवि की कहानी पर आधारित थी जिसे तीन अलग अलग महिलाओं से प्यार हो जाता है और ये इस फिल्म की कहानी अंग्रेजी के बहुत बड़े लेखक डीएच लॉरेंस की रचनाओं से प्रेरित थी। और अगला गीत लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

वक्त हुआ है 1:55 और 6 सेकंड। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अगला गीत मन्ना डे और लता लता मंगेशकर की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत के आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार से मुलाकात करेंगी तथा साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को दिए जाने वाले 2000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास सेवा पखवाड़ा के

0: तहत कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य सेवा की भावना, समुदाय की भागीदारी और देश के प्रति समर्पण को बढ़ावा देना है। विकसित भारत दौड़ 2026 के लिए कल भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकजुट हुए। यह दौड़ भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इंडियन पीपल्स फोरम IPF के साथ मिलकर मशहूर दुबई फ्रेम के पास आयोजित की थी। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर के कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। अफगानिस्तान जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, लेकिन ग्रुप स्टेज में उसे नेपाल से हार का सामना करना पड़ा था। अफगानिस्तान की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने और सेमीफाइनल में जगह बनाने की पूरी कोशिश करेगी। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नूना गैप्रिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
2: 10 years pehle, 28-29 September 2016 ko, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikano par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 क्रोर फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार। ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी। मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लेनलीनेस ड्राइव अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऑन द 2nd of October. He said, millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukti Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed 3-day nationwide bank strike, which was to begin from today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association, AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between IBA and the United Forum of Bank Unions, UFBU, on the issues related to the strike. Defence Minister Rajnath Singh has said, India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defense conclave in New Delhi yesterday. He said, India does not seek to occupy the territory of any country, but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said, as long as a neighboring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a 2-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the 2-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability and farmers' incomes. The Supreme Court will hear a plea today challenging the centre's decision to impose a merchant discount rate, that is MDR, on specified UPI person-to-merchant transactions of over 2,000 rupees. ending near

तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। तुम चाहो या ना चाहो, प्रेम तुम्हें ढूंढ ही लेगा। छिपने की जितनी कोशिश करोगे उतना ही करीब आएगा, और जब तुम्हारे जीवन में उतरेगा वो इतना गहरा होगा कि तुम्हारी प्रेम पर लिखी हर कविता फीकी पड़ जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 13 सेकंड। रात सुरमई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत किशोर कुमार की आवाज के साथ

मैं तो आ गई हूँ, अब बस इंतजार है तो आपका इंतजार है। तो जल्दी से जुड़िए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

जब इश्क परवान चढ़ता है तो दिल कुछ ऐसा ही महसूस करता है ना? दिल जब किसी के प्यार में बहुत डूब जाता है तो फिर पुराने गिले, शिकवे, शिकायतें सब पीछे रह जाते हैं। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि खुलकर इस समां को, इस मोहब्बत को जी लिया जाए। और ऐसे वक्त में बादल भी दीवाने हो जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो फिर ये अगला गीत सुनकर समझ लीजिए, अगला गीत रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

आपने एक बात नोटिस की, जब हमें मोहब्बत होती है तो दिल का मौसम बिना वजह बदल जाता है ना? सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ शायराना शायराना लगने लगता है। इसी को कहते हैं शायद मोहब्बत का खुमार, जब दो निगाहें एक दूसरे में खो जाना चाहती है, और अगर ये निगाहें फिर एक साथ साथ देने में बदल जाए तो जीवन में फिर कोई और गुंजाइश नहीं रहती। अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में, आप ही के लिए।

वैसे ये बात तो मुझे आपसे कहनी थी कि अगर आप साथ रहेंगे तो हम मस्त नगमे और प्यार भरी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं रात सुरमई में प्यार की, एहसास की, और जब बात होती है जज्बात की तो हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। सब कुछ होने के बाद जो कुछ नहीं है वही हो तुम। तुम्हारे होने के बाद जो कुछ भी है वही सब कुछ है। हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:45 और 47 सेकेंड। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। अगला गीत लता जी की आवाज में।

प्यार में ये जो खूबसूरत कश्मकश होती है ना, वो सच में बहुत अच्छी लगती है। मोहब्बत के शुरुआती दौर का प्यार कुछ ऐसा ही होता है, जब कोई सामने नहीं होता तो निगाहें बस उसी को तलाशती रहती हैं, मन में दिल में एक बेचैनी सी छाई रहती है, और वही इंसान जब सामने आ जाता है तो शर्म के मारे नज़रें मिलाना भी मुश्किल हो जाता है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

ये तो सच बात है कि जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी ही मिलती है, तो इसलिए जब भी मिले मोहब्बत आपको तो उसे संभाल के रख लेनी चाहिए। रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी सुरभि, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। नेपाल में 4 दिनों की मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 21 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हुए हैं, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सबसे ज्यादा मौतें भूस्खलन के कारण हुई हैं। भूस्खलन से 14 लोगों की जान गई और 5 लोग लापता हो गए। बाढ़ से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोगों की मौत लगातार बारिश के कारण हुई। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.
1: 10 years ago, 28-29 September 2016, Bharatiya Sena ne Pakistan mein aatanki thikanon par surgical strike ki thi. सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था. बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा. अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है.
2: स्पीकिंग अबाउट सेंसस 2027, मिस्टर मोदी सेड डेटा फ्रॉम मोर देन 32 करोड़ फैमिलीज हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड सो फार. ही अर्ज्ड पीपल टू पार्टिसिपेट इन द ड्राइव एंड यूज सेल्फ इन्यूमरेशन फैसिलिटी. मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉल्ड फॉर ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लेनलीनेस ड्राइव्स अहेड ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ऑन द 2nd ऑफ अक्टूबर. He said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukta Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth and announced health checkups and meditation camps as part of the 100-week campaign. The proposed three-day nationwide bank strike, which was scheduled to begin today, has been deferred. It was confirmed by All India Bank Employees Association AIBEA. The decision in this regard was taken following an agreement with the Indian Banks Association, that is IBA. In a social media post, the AIBEA has stated that this decision was taken after a meeting held between IBA and the United Forum of Bank Unions, UFBU, on the issues related to the strike. The Supreme Court will hear a plea today challenging the Centre's decision to impose a merchant discount rate, MDR, on specified UPI person to merchant transactions of over 2,000 rupees. Ending nearly 6 years of fully free UPI payments, the government has introduced a 0.4% fee on transfers of over 2,000 rupees made to merchants through the UPI platform from October the 15th, while explicitly ring-fencing everyday person-to-person transactions and small payments from any charge. The MDR will be capped at rupees 300 for payments of 75,000 rupees and above. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan will inaugurate a two-day national conference on agriculture for Rabi campaign 2026 in New Delhi today. The Agriculture Ministry said in a statement that the two-day conference will focus on strengthening center-state coordination and evolving a coordinated, outcome-oriented strategy for enhancing agricultural production, productivity, sustainability and farmers' income. The Department of Animal Husbandry and Dairying will launch the Livestock Insurance Portal in New Delhi today. The Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying said that the portal will provide a single integrated digital platform for livestock insurance. It will enable streamlined policy issuance, claim processing, monitoring and reporting in case of animals insured under the Livestock Insurance Scheme. The Election Commission of India has revised the schedule of ongoing special

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूँ आपके साथ सुरभि। बात खूब कहा है किसी ने कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, फिर इसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी, वो मेरे साथ रहा और फिर मुझे कभी न मिला। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी न मिला। तो हमराही आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आगाज करते हैं सबसे पहले मेला फिल्म का ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली। चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा।

3:45 और 28 सेकेंड हो रहे हैं. आप सुन रहे हैं हमराही प्रोग्राम सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज. जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जलवों ने मचलना छोड़ दिया, पोशाक बहारों ने बदली, फूलों ने महकना छोड़ दिया. जब दिल ने तड़पना छोड़ दिया, जलवों ने मचलना छोड़ दिया.

0: हमराही में चलिए अब चलते चलते सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गीत किशोरदा और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते।

और इसी गीत के साथ हमराही का सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की। यह फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश आज 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल रविवार से मंगलवार तक कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री सीतारमन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रूपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रूपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने आम व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। फेयरफोर्ड में रॉयल एयरफोर्स बेस के पास आतंकवादी हमले की साजिश रचने के शक में कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद लंदन स्थित अमरीकी दूतावास ने ब्रिटेन में अमरीकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमरीकी दूतावास ने बताया कि ब्रिटेन के अधिकारियों के अनुसार अभी हमले के खतरे का स्तर गंभीर है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हितों को निशाना बनाया जा सकता है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। यह मैच नेशन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में भारत सीधे क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम अपना स्वर्ण पदक बचाने की कोशिश करेगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैंड प्रिशली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला।

अरुणिमा, आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। मैं हूं सुरभि आपके साथ। आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते। रखने को तो रखते हैं खबर सारे जहां की, रखने को तो रखते हैं खबर सारे जहां की, एक मेरे ही दिल की वो खबर हाँ नहीं रखते। आशिक है मगर इश्क नुमाया नहीं रखते, हम दिल की तरह गिरेबा नहीं रखते।

अरुणिमा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, जो इधर दिल में है यारा वो उधर पैदा कर। दे मोहब्बत तो मोहब्बत में असर पैदा कर, काम लेने हैं मोहब्बत में बहुत से यारब, और दिल दे हमें एक और जिगर पैदा कर।

कभी यूं मिले कोई, कोई खौफ दिल में जरा ना हो, मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो। कभी धूप दे कभी बदलियां, दिलो जहां से दोनों कबूल हैं, मगर उस नगर में न कैद कर जहां जिंदगी की हवा ना हो। मुझे अपनी कोई खबर ना हो, तुझे अपना कोई पता ना हो।

4:52 हो चुके हैं. आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़. प्रोग्राम है अरुणिमा. और अब चलते चलते सुनते हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता का ये गीत.

और इसी गीत के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल sec.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कतर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे आज दोहा में आयोजित होने वाली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 11वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वे AIIB के अध्यक्ष और जॉर्डन, स्विट्जरलैंड, अल्जीरिया, सऊदी अरब तथा नेपाल के समकक्षों के साथ अन्य महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन कतर सरकार के नेतृत्व से मुलाकात करेंगी, साथ ही कतर के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय आज केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का निर्णय लिया गया है। लगभग 6 साल तक पूरी तरह से मुफ्त UPI भुगतान की सुविधा समाप्त करते हुए सरकार ने 15 अक्टूबर से UPI प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के हस्तांतरण पर 0.4% शुल्क लागू कर दिया है। वहीं सरकार ने व्यक्ति से व्यक्ति आम लेन देन और छोटे भुगतानों को किसी भी शुल्क से मुक्त रखा है। आज से शुरू होने वाली 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित हो गई है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन AIBEA ने इसकी पुष्टि की है। ये फैसला भारतीय बैंक संघ IBA के साथ हुए समझौते के बाद लिया गया। AIBEA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों पर भारतीय बैंक संघ और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 30 अक्टूबर होगी। नोटिस और दावे आपत्तियों के निपटारे का काम 30 नवंबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 4 दिसम्बर को प्रकाशित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में NC सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं बेखुदी फिल्म के इस गीत के साथ, कुमार शानू और आशा भोसले की आवाज में।

भोर सुहानी, आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि हमें खुद पर भरोसा है और हम मेहनत करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। और जीवन में आत्मविश्वास हमें निराशा से बचाता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वयं पर विश्वास रखना सफलता की आधी मंजिल पार करने के समान है।

भोर सुहानी, आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब कहा है किसी ने कि अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, अपने खोए हुए लम्हात को पाया था कभी, मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी, अब अगर अश्क उमड़ते हैं तो पी जाता हूँ, हौसला आपके दामन ने बढ़ाया था कभी, मैंने कुछ वक्त तेरे साथ गुजारा था कभी। और जिंदगी में ऐसे कठिन लम्हे कई दफा आते हैं जब लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, लेकिन उम्मीद और आत्मविश्वास को थाम कर इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर जाता है।